वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोष शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

तोहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला के निश्चित तोहां सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तोहां सारे इये बनी रिया के सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंडी।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसदा नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए तोहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तोहा सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने पंगे।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने

0: तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत, अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: ज़ूम इन, ज़ूम
2: इन। डोंट वरी सर, रिफंड के लिए क्यूआर कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: क्यूआर कोड से रिफंड?
2: यस सर।
3: गॉट इट।
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, क्यूआर कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
9: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
9: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
8: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
9: तुम बुरा मान गई ना?
8: नहीं तो
9: तुम बुरा मान गई, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

0: मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोर्दा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ, आई एम सॉरी।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दे अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने जो जूते ऑर्डर किए थे फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
9: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
8: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
10: Oh, no.
8: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
9: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
8: तुम बुरा मांगी ना?
9: नहीं तो
8: तुम बुरा मांगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ इस बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत के साथ। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से आप सभी रख रहे हैं। जी दोस्तों, तो एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई एक उत्साह, नई एनर्जी के साथ, नए पल के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं और गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में इस समय आप सभी एंजॉय करने वाले हैं अब ये बहुत ही प्यारा सा सफर। हर दिन कुछ खास जानकारियों के साथ, कुछ खास बातों के साथ आप सभी जुड़ते हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। दोस्तों कहते हैं जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते तब वो आपसे नजरें चुराने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं, कमियां निकालने लगते हैं। लेकिन हमें हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप सभी ने सुना होगा ना दोस्तों कि लोगों का काम है कहना और हमारा काम है जिंदगी में आगे की ओर सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जाना, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। तो उसी तरह से आप इस अपनी जिंदगी को बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बना सकते हैं कुछ प्यारे से लम्हों के साथ, कुछ प्यारी सी बातों के साथ। तो दोस्तों आज यानी कि 10 जून 2026 का दिन है, तो किस तरह से आज की प्लानिंग, किस तरह से आज की रूटीन आप सभी की रहने वाली है? प्यार भरी होनी चाहिए, खुशियों से भरी होनी चाहिए, अपनों की यादों के साथ होनी चाहिए। तो फिलहाल तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप सभी एंजॉय करने वाले हैं इस बेहद प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम को। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बातचीत के साथ साथ बहुत जरूरी है मनोरंजन, तो साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और ये बातचीत का सिलसिला हर दिन खास रहता है, हर पल आपके लिए खास रहता है। तो आज के दिन क्या खास रहने वाला है, ऐसी कौन सी खास बातचीत आप सभी के लिए रहने वाली है, तो ये जानने के लिए आप सभी जुड़े रहिए अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो फिलहाल तो हम रुक करते हैं अपनी बातचीत का मौसम की ओर। तो दोस्तों इस समय धर्मशाला का तापमान आप सभी महसूस कर सकते हैं 21 से 22 या 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मौसम कभी सर्द है तो कभी गर्म है। अगर हम कल शाम की बात करें तो बहुत ही तेज हवाओं के साथ जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, कुछ कुछ क्षेत्रों में हुई होगी, कुछ कुछ में ना भी हुई हो सकता है ऐसा। लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदाबांदी हो रही है तो थोड़ा सा ठंड का महसूस होना लाजमी है जी दोस्तों। और जैसे ही धूप खिल रही है तो बहुत तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तो मौसम का मिजाज ना एकदम से अलग है। और दोस्तों मौसम की बात करें या अपनी जिंदगी की बात करें तो आप सभी ने देखा है कि अगले ही पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब कौन इस दुनिया को छोड़कर चला जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए एक दूसरे के साथ जो हमने बैर भाव बना के रखे हैं उसे कौन साथ में लेकर जाएगा, कौन जो है उनके साथ जी सका है या जी रहा है या जी पाएगा, कोई भी नहीं दोस्तों। जिंदगी में सिर्फ अपनापन और एक अच्छा व्यवहार जो है ना वही हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रदेश में जून की गर्मी से अब मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी तपने लगे हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए जो है ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के कुछ हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। और अगर हम 11 जून की बात करें तो 11 जून से मौसम का ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। तो ऐसे में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है जी दोस्तों। तो ये मौसम से जुड़ी जानकारी है और भी हम बहुत सारी बातें आज के इस सफर में करने वाले हैं, कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचने वाली हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा स्टेप, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल बस छोटा सा ही तो काम है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं। तो थोड़ा सा इंतजार और बातों की बरसात और ढेर सारी जानकारियों की बरसात। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, क्योंकि जानकारियों के लिए या बातों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना बेहद जरूरी है।

0: 91.5 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आप सभी रुचिका की ढेर सारी बातें तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी जानते हैं 9:20 हो चुके हैं और अब क्या समय है, कौन सा समय है जानकारियों का। जी दोस्तों, तो आइए प्रादेशिक समाचारों की ओर चलते हैं, फिर से वापस आएंगे आप सभी के साथ, जुड़ेंगे ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ।
1: जाति आयोग ने प्रदेश के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक कर जनजाति समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर किया विचार विमर्श, और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानी ले रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की उपलब्धि पर देश विदेश के नेताओं ने बधाई देते हुए भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर से निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की सभ्यता से जुड़ी विरासत पर गर्व को बढ़ावा दिया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला परसद विशेषर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कल 11 जून को होने वाली इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें RDG बंद होने से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई, GST व्यवस्था, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी व व्यवहारिक मुआवजा व्यवस्था और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। गौरतलब है कि नीति आयोग की बैठक का एजेंडा मानव संसाधन विकास, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐसे श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है जो प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। वे कल शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में 5,870.01 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश वाले 42 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में दी गई स्वीकृतियां एक प्रगतिशील व समावेशी औद्योगिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऊना जिला के औद्योगिक क्षेत्र टहलीवाल में जल्द ही लोगों को आधुनिक सीवरेज व्यवस्था की सुविधा मिलेगी। जल शक्ति विभाग ने 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती आबादी, औद्योगिक गतिविधियों और शहरी विस्तार को देखते हुए आधुनिक सीवरेज व्यवस्था समय की मांग थी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत आधुनिक सीवरेज नेटवर्क को विकसित किया जाएगा और परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में स्वच्छता के अलावा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शिमला में चल रहे 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की धूम जारी है। 12 जून तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। एक रिपोर्ट।
2: ऐतिहासिक रिज मैदान पर जारी अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव स्थानीय लोगों सहित यहाँ पहुँचे हजारों पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। बीते कल रिज मैदान पर माँ की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाटी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा बाहरी राज्यों के कलाकारों के अलावा प्रदेश के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने भी यहाँ मौजूद लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। महोत्सव में रिज मैदान पर फन अट्रैक्शन के रूप में स्टैच्यू मैन व फ्लावर शो भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोगों की सुविधा के लिए जहां परिवहन विभाग ने विशेष टैक्सी संचालित की है, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जगमोहन शर्मा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के 25 युवा प्रतिभागियों ने कल स्पीति घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम पोस्ट ऑफिस, अपने परिजनों, मित्रों और प्रधानमंत्री को पत्र भी भेजे। इन प्रतिभागियों ने गोम्पा, चिचमपुल व लंगजा गाँव का दौरा कर यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन शैली को भी जाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपने हिमाचल प्रवास के दौरान कल शिमला में राज्य के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की। बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं सहित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। अंतर सिंह आर्य ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विषयों व सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है। मैदानी राज्यों से लोग हिमाचल के शुद्ध वातावरण का आनंद लेने के लिए राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। कुल्लू जिले में हर रोज लगभग 5,000 सैलानी यहां आकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने यौवन पर है तथा प्रतिदिन लगभग 5,000 पर्यटक वाहन यहां आ रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में वाहनों के आने के बावजूद सैलानियों व स्थानीय लोगों को स्वच्छ एवं ताजा हवा मिल रही है। कुल्लू मनाली का स्वच्छ वातावरण एवं निर्मल जल स्रोत लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मनाली व आसपास के इलाकों में अमूमन एक आध दिन को छोड़कर बारिश हो जाती है, जबकि मौसम के खराब रहने के समय ऊंची चोटियों पर हल्का फुल्का हिमपात हो जाता है, जिसके चलते वातावरण में वायु प्रदूषण का असर देखने को नहीं मिलता है। बहरहाल पिछले वर्ष से लेकर अब तक वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है, जो घाटी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए एक अच्छा संकेत है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: चंबा जिला के जंगलों में लगी आग से करोड़ों रुपए की वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं दुर्लभ वन्य जीवों और जैव विविधता पर भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मुख्य वन्य अरण्यपाल राकेश कुमार ने बताया कि विभागीय कर्मचारी फील्ड में तैनात है, जो आग बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने वाले लोगों के खिलाफ भविष्य में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है, पारंपरिक रास्तों को रोकना गैर कानूनी, भूमि मालिक भी बंद नहीं कर सकते। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। दैनिक जागरण की एक खबर है, 5,870 करोड़ रुपए के निवेश से लगेंगे 42 उद्योग, 13,000 को मिलेगा रोजगार। पंजाब केसरी लिखता है, कांग्रेस का सख्त रुख, नीरज भारती सहित 4 पदाधिकारी निष्कासित। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी। जबकि दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नॉर्वे के साथ मिलकर कचरा प्रबंधन और हरित विकास पर काम करेगा हिमाचल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश विदेश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को बताया ऐतिहासिक। कल 11 जून को आयोजित होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रदेश के सांसदों व विधायकों के साथ बैठक कर जनजातीय समुदाय के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर किया विचार विमर्श। और प्रदेश में पर्यटन सीजन जोरों पर, सैलानी ले रहे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं FX+ Point ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। कभी अपनों ने रुलाया तो कभी गैरों ने ठुकराया, लेकिन हर दर्द ने एक नई सीख दी। पहले हम हर किसी को अपना समझ लेते थे, लेकिन अब लोगों को समझने में हम वक्त लेते हैं, क्योंकि चेहरे अक्सर सच नहीं बताते। चेहरे पे चेहरा लेकर आज के समय में लोग घूमते हैं। कुछ लोग साथ रहकर भी साथ नहीं होते, और कुछ दूर रहकर भी अपना वो साथ का फर्ज बहुत अच्छे से निभाते हैं। आज भी दिल में वही सच्चाई है, बस अब खामोशी को अपना साथी बना लिया है, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब वक्त और हमारे जिंदगी में जो भी किए हुए कर्म हैं, उसका जवाब वो खुद ब खुद दे देते हैं। जो खो गया उसे भूलना नहीं, उससे सीखना जरूरी है, और जो साथ है उनकी कद्र करना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो मुश्किल हालात में भी अपने चरित्र और इंसानियत को कभी नहीं छोड़ता। क्या लगता है दोस्तों आप सभी को, इन शब्दों में, इन बातों में क्या सच्चाई है? वो सच्चाई की गहराई है? नहीं लगता है तो इस गहराई में जाकर देखिए। आज के इंसान की जिंदगी का यही सच है। इंसानियत है ही नहीं। आप लोगों को देखने जाएं या जिंदगी में ढूंढने जाएं तो बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो सामने से तो बहुत मीठे और बहुत ही अच्छे हमारे लिए बनते हैं, लेकिन जरा सी हमारी पीठ उनकी तरफ हुई या हमने उनसे थोड़ा सा भी नफरत या लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ी सी भी खटास आ गई, तो वही लोग आपके बारे में न जाने क्या क्या बातें सुनाएंगे, न जाने कब क्या बोलें जो आपके दिल को छुप जाए। और दोस्तों, कहते हैं ना कि विश्वास बनने के लिए सदियां लग जाती हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन जब वो विश्वास टूटता है तो उसे टूटने के लिए सिर्फ एक सेकंड बहुत होता है, और जब वो टूटता है तो किसी किसी की तो जिंदगी बिखर के रह जाती है, जिंदगी टूट सी जाती है। तो दोस्तों, जिंदगी में इंसान लाना, इंसानों को अपना बनाना बेहद जरूरी है, लेकिन किसको अपनी जिंदगी में लेकर आना है, किसको नहीं लेकर आना है, ये सोचना हमारे हाथों में है। तो फिलहाल आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातों के साथ, बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक बार फिर से वापस आते हैं अपनी कुछ खास बातों के साथ। जी दोस्तों, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये जो बातें होती हैं सच में वाकई में सच्ची होती हैं या सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाती हैं, सिर्फ कहने सुनने तक ही इनका अहमियत रह जाती है? अगर हम जिंदगी से इनको रिलेट करके देखें, अगर हम जिंदगी से इनको जोड़ कर देखें असल जिंदगी में, तब हमें पता चलता है कि असल में हम कहाँ डिजर्व करते हैं, कहाँ रह रहे हैं और किस और जा रहे हैं। लेकिन हमें फुर्सत ही कहाँ है, हम तो लोगों की जिंदगी में झांक कर ही नहीं थकते कि अपनी जिंदगी में देखने को समय मिले। तो बस इसी भागदौड़ में जो है ना, हम कहीं ना कहीं खुद को भूलते जा रहे हैं। और जब हम खुद को भूल जाते हैं दोस्तों, तो खुद से जुड़ी हर बात को भूल जाते हैं। फिर चाहे वो हमारी हेल्थ से जुड़ी बात हो, चाहे वो हमारी जिंदगी को संवारने से जुड़ी बात हो। तो आप क्या चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एक सही दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हैं या लोगों को देखकर उसी भागदौड़ के पीछे भागना चाहते हैं? भागते भागते एक दिन थक जाएंगे, लेकिन जब रियलिटी और सच्चाई के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, तो हमें ना तो कोई डर होगा, ना तो कोई थकान होगी। होगा तो बस खुद पे गर्व होगा कि हमने बाकियों को देखकर नहीं, अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुना, खुद को समझकर, खुद को जानकर। तो फिलहाल दोस्तों, ये बातें तो इसी तरह से चलती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियां भी आप सभी का इंतजार कर रही हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपनी रेडियो दोस्त रचिका।

0: अगर जी दोस्तों, ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों का ये सिलसिला आप सभी सुन रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट से। और एक आप सभी को बता दूं दोस्तों कि रेडियो गुंजन आप सभी के लिए अपडेट लेकर आया है कि आप सभी कार्यक्रम के कुछ कुछ शॉर्ट्स जो है लाइव के माध्यम से फेसबुक पेज पे भी सुन सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये एक नया एडिशन है आप सभी के लिए और हम सभी के लिए भी, जिससे कि आप सभी अपने होस्ट से रूबरू हो सकते हैं और उनकी बातों को लाइव सुन सकते हैं। कि रेडियो पे तो सुनना एक अलग बात है, लेकिन लाइव में किस तरह से क्या, तो ये आप सभी एंजॉय कर सकते हैं जी दोस्तों। तो बातचीत का ये सिलसिला तो इसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है जानकारियां। और जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू ही होता है, खैर अभी तो काफी समय हो गया दोस्तों हमें गर्मियों के मौसम में एंटर किए हुए, और जैसे जैसे धूप तेजी से हमारे सामने आती है तो उसी तरह से गर्मी बढ़ने लग जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी अगर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा ठंड जो है महसूस हो रही है, थोड़ी सी सर्दी सी लगने लग रही है। लेकिन हम गर्मियों की बात करें, जानकारी की बात कर रही थी दोस्तों मैं, तो एक बहुत ही खास जानकारी कि आजकल गर्मियों के मौसम में जंगलों में जो है हम आग बिना सोचे समझे, बिना किसी की जान के परवाह किए जो हम लगा आते हैं, क्या वो सही है या गलत है? इस बात पे सोचकर देखिएगा ये बात कितनी सही है और किस हद तक सही है। माना कि आप कुछ सोच समझ के, क्योंकि जो किसान है जो जंगलों में, माना कि बहुत ज्यादा घास हो जाती है तो गर्मियों में जलाना थोड़ा इजी रहता है, लेकिन क्या उसके पीछे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? अगर हम आग लगा रहे हैं तो हमें जितने से एरिया में आग लगानी है उस समय तक वहां खड़े रहकर उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों रात को हम तो अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन जंगलों में जहां हम आग लगा कर आते हैं वहां हजारों पक्षी जो हैं अपने घोंसलों में आराम कर रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। तो जैसे हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, क्या उन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या हम इंसान होने के नाते सिर्फ अपने स्वार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे? हमारी प्रकृति को जो सुंदर बनाते हैं, जो ये पशु पक्षी, जो हमारे ये प्यारी प्यारी सी धौलाधार की पहाड़ियां, ये पेड़ पौधे, उसे संरक्षित करना, उसे सेफ रखना, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ हम ये बात कहकर टाल दें कि ये काम प्रशासन का है, ये प्रशासन करे, ये क्या ये सही है? हम इंसान होने के नाते प्रशासन अपनी तरफ से जो हो सके वो करेंगे, लेकिन हम इंसान हैं और इंसानियत होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम उसके लिए जागरूक कब होंगे? हम दिन बनाते हैं, बहुत उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी अहमियत को शायद हम समझ नहीं पाते। तो मेन उद्देश्य तो वही होता है कि उस अहमियत तक हम पहुंच सकें, उसको हम समझ सकें। और जैसे हमें अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी जिंदगी से प्यार है, उसी तरह से उन पशु पक्षियों के प्रति थोड़ा सा प्यार अगर हो सके तो जरूर दिखाइए अपनापन। जब जरूरत थी तब उन्हें हमें जो है अपने घरों में रखते थे, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन जैसे ही समय बदला, मॉडर्न की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, तो मशीनों के ऊपर हम डिपेंड होते जा रहे हैं और बीमारियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। तो इस पे जरूर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, सोच विचार कीजिए और इन बातों का थोड़ा सा अपनी जिंदगी में एक अहमियत को समझ कर देखिए। सही है या गलत है आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद सही गलत का फर्क जो है इसमें आप सभी कर पाएंगे। तो फिलहाल कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और बातों के साथ साथ प्यारे प्यारे से गीत भी आप सभी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।
1: ला ला ला ला।

से सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आप सभी जानते हैं कि समय समय के साथ हमें ढलना जरूरी होता है, एडजस्ट करना बेहद जरूरी होता है। तो फिलहाल कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला में अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, बहुत ही प्यारी प्यारी सी कुछ खास बातों के साथ, अपनी डेली रूटीन के साथ एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन की शुरुआत।

साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला को। जी दोस्तों, तो कैसे जो बातें अगर हम कहें, जो भी हमने अब तक बात की है, उसमें अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगती है, एक भी शब्द में अगर सच्चाई लगती है, पूरी नहीं, अगर किसी एक शब्द में भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाकई में सच है, तो उस सच को समझने से ज़्यादा बेहतर है उस पर काम करना। अगर आपने वाकई में उसे समझ लिया है तो उसकी गहराई में जाइए, और कहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो गलती कर रहे हैं तो उस पर गौर कीजिए, उस पर काम कीजिए, तभी हम जिंदगी को एक नया मुकाम दे सकेंगे, नई दिशा की ओर लेकर जा सकेंगे। दोस्तों, हर पल, जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि हर पल हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। जब नई शुरुआत होगी तो पुरानी सारी बातें हमारी ज़िंदगी से खुद ब खुद हमसे दूर हो जाएंगी। अक्सर जो हम परेशान होते हैं, जो हमें स्ट्रेस होता है, वो किस वजह से होता है? क्योंकि हम एक ही बात को बस सोचते जाते हैं, उसी बात पे विचार करते जाते हैं, पर वो सोचना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर आप उस पर काम करें, माना कि आपको कोई एक बात परेशान कर भी रही है और आप बार बार सोच रहे हैं, पर उसका फायदा तब है जब आप उसे समझ कर उस पर काम करें। कोई भी काम है दोस्तों, बिना प्लानिंग के, बिना किसी भी मोटिव के तो होता नहीं है। जिंदगी में अच्छा होता है, बुरा होता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिव जरूर रहता है, लेकिन वो हमें उस समय समझ में नहीं आता, हमें समझ आता है कुछ समय के बाद। तो फिलहाल दोस्तों, इन बातों को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, तो ज़रूर सोचिए, विचारिए। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर से मिलेंगे आपके साथ ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर, आप सभी के अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और बहुत ही कुछ खास जिंदगी से जुड़ी बातें आप सभी सुन रहे हैं, और अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं अगर रिलेट करती हैं तो जरूर उन्हें समझिए, जानिए और उस पर काम कीजिए। तो दोस्तों, ये बातचीत का सिलसिला जानकारियों का सिलसिला है और साथ ही मनोरंजन का। तो बिल्कुल साथ ही साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं एक खास जानकारी। दोस्तों, विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के कारण 11 केवी टंग फीडर के क्षेत्र टंग, तिरंगा, खैवर, दवचैंक, टिकरी, सालिग, बगियाड़ा, कंड करडियाणा, जूल, डिक्टू, नरवाणा, नरवाणा कस्बा, ब्लेड में 11 जून यानी की कल सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, और यदि मौसम खराब रहता है तो कार्य अगले दिन किया जाएगा। जी दोस्तों, तो इस जानकारी से जुड़ी एक बात भी आप सभी के साथ जरूर साझा करना चाहूंगी कि विभाग की तरफ से हमें पहले ही एक तरह से बता दिया जाता है, अलर्ट जो है वो दे दिया जाता है कि इस दिन बिजली जो है वो बाधित रहेगी किसी भी कारण, कोई भी कार्य है उसी के चलते। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने हाइपर हो जाते हैं, एकदम से एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, और बस मन करता है कि, और वैसे भी गर्मियों का मौसम है तो कई बार एसी या कूलर या फिर पंखे के बिना हवा की वजह से जो है हमें गुस्सा जो है ना वो हाई हो जाता है। एक तो गर्मी का पारा, ऊपर से गुस्से का पारा, तो दोनों डबल हो जाते हैं, तो फिर काम भी गड़बड़ा जाता है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले के समय में तो ना पंखे होते थे, अब तो खैर एसी है, कूलर है, तो अब तो बहुत कुछ सुविधाएँ जो हैं हमारे पास आ चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, जितनी सुविधाएं उतनी ही परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। तो जहां हम सुविधाओं का फायदा ले रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा पेशेंस भी अपनी जिंदगी में बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज के समय में युवाओं की हम बात करें तो युवाओं में पेशेंस नाम की चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं क्या रीजंस हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये पेशेंस की कमी कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? क्या कहीं पेरेंटिंग में कोई कमी रह रही है, या फिर ज़्यादा लाड़ प्यार जो है उसकी वजह बन रहा है? तो मैं कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जैसे विभाग हमें अलर्ट करता है तो थोड़ा सा हमें उनको कॉपरेट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार हमारी हड़बड़ी के चलते, हमारी जल्दबाजी के चलते जो है विभाग की टीम के मेंबर्स जो होते हैं वो मुश्किलों में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए, उनके जो समय सीमा होती है उसके चलते अगर एक दिन हम थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? तो ये हम इंसान हैं, वो भी इंसान है, तो हम सभी को एक दूसरे को कॉपरेट करके चलना, तभी हम जिंदगी में आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं और हर एक समस्या का समाधान जो है वो एकजुट होकर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपस में ही ऐसे लड़ झगड़ते रहेंगे तो शायद मुश्किलें कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप मुश्किलें कम करना चाहते हैं या मुश्किलों को बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। तो फिलहाल दोस्तों, कार्यक्रम में मुश्किलें तो नहीं है, लेकिन हाँ, बातचीत के साथ साथ कुछ प्यारे प्यारे से गीत जरूर हैं। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 MHz से।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफर में इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जानकारियों का सिलसिला भी हमारे लिए बेहद जरूरी है, और एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी ने जानी और इसी से जुड़ी एक और जानकारी आप सभी तक पहुँचाने जा रही हूँ। दोस्तों, विद्युत लाइनों के सामान्य रखरखाव कार्य के कारण 11 केवी दाढ़ी फीडर के क्षेत्र शीला, लोअर शीला, पासू, भटेड़, अपर मनेड़, लोअर सुक्कड़ और कनेड़ में 11 जून को सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, और यदि मौसम खराब रहा तो कार्य जो है वो अगले दिन किया जाएगा। तो ये बातें हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए, और कल के लिए है तो आज जो भी काम है शाम तक आप कर सकते हैं। और प्रेस का ही होता है, सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलना है, काम के लिए निकलना है, स्कूल के लिए निकलना है, ये सारी चीजें, तो इसमें एक ही बात कि हम शाम को ही अपनी तैयारी करके रख लें ताकि सुबह हड़बड़ी में फिर हमें चीजें यहाँ वहां या फिर एक दूसरे पे गुस्सा करने का मौका ना मिले। तो बिल्कुल दोस्तों, यही होता है जिंदगी में, एक दूसरे को समझना, भावनाओं को समझना, क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना समझ के आगे नहीं बढ़ता। तो फिलहाल इसी के साथ बढ़ते हैं हम भी कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों अलका याग्निक कुमार सानू की आवाजों के साथ उड़ान मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो क्या लगता है दोस्तों, अब तक बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियों के माध्यम से भी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें झलक कर बाहर आई, सामने आई। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं रिलेट करके देखिए और उन्हें भी जानकर देखिए कि आखिर हम कहाँ हैं असल में जिंदगी में। तो यही तो हम नहीं जानते हैं दोस्तों, अपने बारे में सोचना या जानना अक्सर हम भूल जाते हैं। ये सारी बातें, ये सारी चीजें, दूसरे की हर एक चीज का हमें पता होता है, फिर वो चाहे पड़ोसी हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन दुश्मन की भी हर एक बात जानने का जो एक एक्साइटमेंट होती है, एक उत्साह होता है ना, हमें कुछ अलग ही होता है। ऐसा क्यों? इतना उत्साह तो शायद हम खुद के बारे में जानने की बरी में भी नहीं लाते अपने में। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि दूसरों के प्रति इतनी एक प्रेरणा कहें या जागरूकता कहें? ऐसे हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम ये करें वो करें, लेकिन इन सब बातों के लिए समय हम निकाल लेते हैं कहाँ से, है ना, ये सोचने वाली बात। खैर दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी और भी हैं, बहुत सारी जानकारियां भी अभी और हैं आप सभी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। तो आइए, समय है इस छोटे से अंतराल का, मिलते हैं आप सभी से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

दोस्तों इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ, और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम अपनी डेली रूटीन के साथ, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका अगला पन्ना क्या होगा ये लेखक के अलावा कोई नहीं जानता। भविष्य की सोचना गलत नहीं है, पर भविष्य की ख्यालों में आज की सांसों को भूल जाना शायद गलत है। कल की दीवार पर उम्मीद के दिए जरूर जलाइए, लेकिन आज के अंधेरे को दूर करना कभी मत भूलिए। अतीत के जख्म और भविष्य के ख्वाब, इन दोनों के बीच जो वर्तमान को जी गया, जो इस पल को जी गया, वही समझदार है। जब तक हम भविष्य को संवारने की सोचते हैं, तब तक हमारा जो ये इस समय का पल है, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा वर्तमान है, वो अतीत बन चुका होता है। अक्सर हम यही सोचते हैं कि कल को बेहतर कैसे बनाया जाए, कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। यही सब सोच हमारे दिमाग में बस चलती रहती है, भागती रहती है, दौड़ती रहती है। लेकिन एक बात पे गौर कीजिए कि वो कल कभी आया है? वो कल तो फिर कल में चला गया, वो कल फिर से कल बनता गया, बनता गया, बनता गया। न जाने उस कल के इंतजार में कितनी सदियां बीत गई, शायद हमारी पूरी जिंदगी बीत जाए। तो उस कल के चक्कर में हम आज जो ये पल है जो हम जी रहे हैं उसे क्यों गंवा रहे हैं, उसकी अहमियत को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सोचना शायद जरूरी है। और दोस्तों ये जो हमारा आज का पल है ना, इसको न जाने कई बार हम ऐसे अननोन पर्संस के लिए, ऐसे कुछ लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिनकी अहमियत हमारी जिंदगी में शायद कुछ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन के इस कीमती समय को जाया कर रहे हैं उन अनजान लोगों के लिए, अपनी अहमियत को भूल के, अपनी जिंदगी के इस कीमती समय को भूल के। तो जरूर इस कीमती समय की अहमियत को समझिए, क्योंकि ये जिंदगी किताब के पन्नों की तरह है और अगले पन्ने में क्या है ये हम नहीं जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किताब लिखने वाले ही जानते हैं, वही जानते हैं कि अगले पन्ने में क्या होगा या अगले पल में क्या होगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि अगला पल हमारे पास है या नहीं, है ना ये सच बात? एग्री करते हैं तो ज़रूर इस बात पे सोचिए और सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आओ प्यार करें। फिल्म का ये प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को और सतर्कता और जानकारियों की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए एक स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया है। प्रदेश के वन मंत्री को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है जबकि विभिन्न विभागों को इसमें बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत ने एक अधिसूचना

जारी की है। ये समिति राज्य वन्य जीव बोर्ड की ओर से उन मामलों पर विचार करेगी जिन्हें शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है। समिति संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों और संरक्षण रिजर्व से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगी। इसके अलावा विकास परियोजनाओं के कारण वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन किया जाएगा। समिति मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए आवश्यक उपायों पर सुझाव देगी तथा जंगली जानवरों से फसलों, पशुधन और लोगों को होने वाले नुकसान से जुड़े मामलों पर भी विचार करेगी। तो दोस्तों, जो पशुओं से फसलों को नुकसान पहुंचने की बात पे अगर हम गौर करें तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे, है ना। खैर, इसके लिए तो बहुत सारे समाधान निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, जब जो काम होता है वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि पशु जो हैं वो खेतों में उजाड़ डाल देते हैं और हमारी मेहनत सारी बेकार चली जाती है। लेकिन एक बात ये भी तो सोचिए ना कि जब आपने पशुओं को घर से निकाल दिया, उन्हें आवारा छोड़ दिया, तो वो कहाँ जाएं? वो कहीं ना कहीं तो बेचारे अपना पेट भरेंगे ना। लेकिन हम इंसान अपने इन कर्मों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि अक्सर हम कैमरे के सामने तो सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, कैमरा देख रहा है, लेकिन जो हमारे 24 आवर्स जो हमारे कर्म रहते हैं, जो ऊपर वाला देख रहा है, उससे कौन बचेगा? बचेगा कोई? कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, भले ही आप घर पे अपने पशुओं को थोड़ा खाना दीजिए, लेकिन कम से कम उन्हें एक छत के नीचे रहने का मौका दे दीजिए। क्योंकि जब आपके पास ये मशीनी वर्क नहीं था, तब उन्हीं पशुओं ने आपका साथ दिया था, उन्हीं पशुओं ने आपका सहारा बने थे। गाय की भी हम बात करें, जब तक वो दूध देती हैं तब तक आपके लिए वो एक तरह से सही होती हैं, और जैसे ही वो दूध देना छोड़ देती हैं तो आप उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, माना कि वो बोलते नहीं हैं, वो बोल नहीं सकते, लेकिन दर्द उनको भी होता है। जैसे हम छत के बिना नहीं रह सकते, वैसे वो बेचारे बारिश में, कड़कती धूप में वो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं उजाड़ तो करेंगे, फिर वहाँ भी मार खाएंगे, वहाँ से भी भागेंगे, यहाँ वहाँ सड़कों में कहीं एक्सीडेंट से उन्हें उनकी जान जा रही है, कभी क्या हो रहा है। तो सोचिए, उनके दिल से बददुआएं कितनी निकलेंगी, बुरी बलाएं जो हैं वो कितनी लेंगे आप? माना कि आपने तो छोड़ दिया, लोग तो नहीं जानते कि वो किसके हैं किसके नहीं हैं, लेकिन वो पशु, वो तो जानते हैं ना कि आप किसके घर में थे और वो कहाँ से आए हैं। तो करने हैं तो जिंदगी में अच्छे कर्म कीजिए, भले ही उन्हें थोड़ा खाना दीजिए, थोड़े में वो रख लीजिए, लेकिन हाँ, उन्हें ऐसे आवारा सड़कों पे मत भेजिए, सड़कों में मत छोड़िए, क्योंकि उनमें भी जान है और उनमें भी भावनाएं हैं, दर्द है। तो ऐसे काम जो है वो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सोचना, खैर, एक सुझाव जो है हम सभी का होता है, बाकी तो आप सोच समझ सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। समझदार तो आप बहुत हैं, ये मैं मान रही हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों, करते जीवन की दिशा निर्धारित निज कर्म, जो बोते कटता वही यही भाग्य का मरम। लोभ कपट का संग क्यों क्यों करते छल छल, राग द्वेष को त्याग दो जीवन के दिन चंद। पर सेवा अरु प्रेम से नहीं श्रेष्ठ कुछ धर्म, करते जीवन की दिशा निर्धारित निज कर्म। माता पिता का मान हो आदर पाए ज्येष्ठ, हो कनिष्ठ पर स्नेह ये पूजा सबसे श्रेष्ठ। भेदभाव सब छोड़कर वाणी रखना नरम, करते जीवन की दिशा निर्धारित निज कर्म। क्षण वंगुर ये देह है तरुणाई दिन चार, परम चिरंतन सत्य हरि परम मोक्ष आधार। श्वास मालिका तोड़कर छूटेगा तन चर्म, करते जीवन की दिशा निर्धारित निज कर्म। दोस्तों, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी एंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, और बहुत ही खास बातें, बहुत ही खास जानकारियां आप सभी तक पहुंचाई, और उम्मीद है कि ये बातें और ये जानकारियां आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कहीं एक दिशा देने के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अब धीरे धीरे समय जो है वो बढ़ता जा रहा है आप सभी से अलविदा लेने की ओर। तो जाते जाते एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ ही दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला

क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के

0: भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने कल जूते ऑर्डर किए थे, फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
4: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
4: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेज टीबी।

0: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: कहाँ जा रहे हो?
2: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
1: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकौड़े ले आना।
2: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
3: Oh, no.
2: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
1: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
2: तुम बुरा मांगी ना?
1: नहीं तो?
2: तुम बुरा मांगी है, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी अनहेल्दी भी खाना चाहिए।
4: कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, हर हफ्ते आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ आप सभी के साथ जुड़ते हैं और कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर, एक और बहुत ही बेहतरीन और खास जानकारी के साथ एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम को आप सभी सुनते हैं दोस्तों अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी तो मैम, स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही प्यारे से कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत करते हैं मैम, तो ये बहुत खास हुआ ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना, खास करके बदलते मौसम के साथ, बदलते लाइफस्टाइल के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। तो इस बार ऐसी कौन सी बातचीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ये सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना होगा हमारे साथ इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल, जैसे मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि बदलती लाइफस्टाइल, या बोल सकते हैं बदलते हमारे इस समय के साथ, हम खुद को कितना बदल रहे हैं, आपको क्या लगता है किस एज ग्रुप में आपको सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं?
1: देखिए, जो टीनेज ग्रुप है, टीनेज से लेके जो यंग एडल्ट्स हैं
0: जी,
1: आई थिंक अराउंड 25 एज तक के बीच में, तो ये जो एज ग्रुप है यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जो कि पहले ये बोला जाता था कि ऐसे में टीनेजर्स को गुस्सा आता था पहले भी, क्योंकि वो उनकी एज ही ऐसी होती है
0: जी।
1: लेकिन आज के इस टाइम पे उनका जो एक बिहेवियर है वो इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि हर पेरेंट आज के समय पे बहुत ही ज्यादा चिंता में है। उनको यही लगता रहता है कि हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चा जो है हमारी बात सुने, समझे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंसर्न्स और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास पहुंच रहे हैं
0: जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैम ने शुरुआत में ही परेशानियों की बात कर दी है, तो परेशानियां तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की हम बात करते हैं हर कार्यक्रम में, कोई एक ऐसी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो देख लीजिए, मैम ने शुरुआत की है परेशानियों के साथ, तो आप भी सोचकर देखिए कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं। तो आजकल आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें सामने आ रही हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं सामने आ रही हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, कहाँ कमी है? सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी कमी, क्योंकि आजकल तो हर कोई इतना अच्छे से अपने लाइफस्टाइल को बना रहे हैं कि हमें किसी भी चीज की परेशानी हो ही ना, फिर चाहे वो किसी चीज की हो या फिर किसी भी एक तरह से सुविधा की हो, हर सुविधा हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं।
1: सुविधाओं के साथ साथ परेशानियां
0: और बढ़ती जा रही हैं। जितनी सुविधाएं मिलती जा रही हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन
1: सुविधाएं इसलिए बनाई गई थी
0: ताकि परेशानियां आसान हो सके,
1: परेशानियां कम हो सके। लेकिन देखिए, जो बड़े लोग इन्वेंशंस करते हैं, एडल्ट्स इन्वेंशंस करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत से हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला पाते हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं, पर उसके साथ साथ ये वैसा इम्पैक्ट है जो हर एज ग्रुप के बच्चे पर या व्यक्ति पर इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो एक ओल्ड एज व्यक्ति हो या फिर वो एक न्यूबॉर्न बेबी हो। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का यूज किस एज ग्रुप के लिए किस प्रकार से करना अच्छा है या अच्छा नहीं है, इस चीज का चेक नहीं कर पाते, इस चीज के प्रति बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते, और हमें लगता है उसकी वजह से सब लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं आज के टाइम पे।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो हम मेन मकसद हमारा यही है, यानी कि उद्देश्य यही है बात करने का कि आज के कार्यक्रम में ऐसी कौन सी बात की जाए। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, आजकल आप सभी देख रहे हैं कि छोटी सी छोटी एज में बच्चों की एक तरह से कह सकते हैं सोचने की क्षमता ज्यादा बढ़ गई है, या फिर उनका मानसिक स्वास्थ्य इस तरह से प्रभावित हो चुका है कि वो छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं कि हर किसी के लिए शॉकिंग है। और आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी सी एज में बच्चे क्राइम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना आज उस पर थोड़ी सी बातचीत की जाए।
1: डेफिनेटली रुचिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है
0: जी। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा इस पे सोच कर देखिए कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो बच्चों में देखने को मिल रही हैं जिस वजह से वो इस और बढ़ते जा रहे हैं। तब तक लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो आइए इस प्रयास को और आगे की ओर लेकर जाते हैं। और बच्चों की बात आती है तो हमें बहुत ज्यादा सीरियस हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जुड़ी एक भी बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हमने नजरअंदाज किया तो फिर उसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। बच्चों को तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ पेरेंट्स को भी झेलना पड़ता है। तो एक एक बात, छोटी से छोटी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। उसके लिए जानकारियां एकत्रित करना, यहाँ वहां से नॉलेज हमें लेना होगा, जानना होगा आखिर बच्चों की लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें इफेक्ट करती हैं। तो मैम बात कर रहे हैं कि आखिर बच्चे छोटी ही एज में क्राइम की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से बच्चों का माइंडसेट इतना आगे तक जा रहा है, इमोशनली, मेंटली या फिर किस तरह से?
1: ये देखिए बहुत ही गहरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है रुचिका। तो इसको हम लोग कुछ टुकड़ों में समझेंगे
0: जी।
1: पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं अपने ब्रेन या अपनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को लेकर। पहले हम उस फैक्टर को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड देन एक जो पर्सनल, जो एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है उस फैक्टर को। तो इसको हम लोग तीन भागों में अंडरस्टैंड करेंगे
0: जी। बिल्कुल।
1: सो सबसे पहले बात करते हैं हमारा ब्रेन डेवलपमेंट की
0: जी।
1: देखिए ब्रेन जो है वो हमारा डिसीजन मेकिंग का एक मास्टर है। हम किस प्रकार से निर्णय लेंगे ये निर्भर करता है कि हमारा ब्रेन डेवलपमेंट कैसा हुआ है। अब ये बात बहुत से कम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एंड मैच्योरली एक ब्रेन डेवलपमेंट को होने में इट टेक्स अराउंड 25 ईयर्स, यानी कि जब तक कोई भी युवा 25 साल तक की उम्र में है उसका ब्रेन डेवलप ही हो रहा है। अब ब्रेन डेवलपमेंट जब होता है तब ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है जिसको आप समझ सकते हैं कि वो बैक टू फ्रंट एक प्रोसेस है, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट पीछे से शुरू होगा और तब धीरे धीरे जाके वो आगे तक पहुंचेगा, यानी कि हमारे नेक से स्टार्ट होगा ब्रेन का डेवलपमेंट एंड देन आगे जाके हमारे माथे पर खत्म होगा। अब देखिए हमारा जो नेक का एरिया है वो सबसे पहले डेवलप हो जाता है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तब उसको एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना सर का बैलेंस बनाना सीख जाता है, राइट
0: जी।
1: फिर वो चलना सीखता है, अपना बैलेंस बनाता है, वॉकिंग सीखता है
0: जी।
1: वो कैसे? क्योंकि जो वॉकिंग है, जो बैलेंसिंग है, जो एक स्पेस और मोटर कोऑर्डिनेशन है वो हमारा सेरिबेलम ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारे पीछे होता है यहाँ पे
0: जी।
1: वो पार्ट इन चीजों का ख्याल रखता है। तो बच्चे में पीछे ब्रेन का पीछे वाला पार्ट डेवलप होना पहले स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे ब्रेन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और डेवलप होना स्टार्ट करता है
0: जी।
1: तो उसके बाद आ जाता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। हमारा लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ब्रेन का जो कि हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, यानी कि हमारे अंदर फियर रिस्पॉन्स है, हमारे अंदर लव की भावना है, हमारे अंदर गुस्सा है, तो इन सभी इमोशंस को वो रेगुलेट करता है। तो जब तक बच्चा टीनेज में आता है वो बड़ा ही इमोशनल आप उसको देखेंगे कि उसके अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है। अचानक से गुस्सा आ जाएगा, अचानक से टैंट्रम्स थ्रो करने लगेगा, और टीनेज में है तो हार्मोनल डेवलपमेंट भी हो रहा है जिसके कारण से वो बहुत सारे इमोशंस को इंटेंसिवली महसूस करता है और उनकी ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी भी इनवेरिएबल होती है, कुछ फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से जब तक बच्चा एक टीनेज ग्रुप में आने वाला होता है तब तक उसका इमोशनैलिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती है। और उसके बाद जाकर धीरे धीरे जब ब्रेन फ्रंट तक पहुंचता है तो इस माथे वाला जो पार्ट है इसके पीछे जो ब्रेन का पार्ट है उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है ब्रेन का जो हमारे लॉजिकल रीजनिंग का ख्याल रखता है, हमारे डिसीजन मेकिंग का ख्याल रखता है, यानी कि अगर हमें वाइज डिसीजन जीवन में लेना है तो वो हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ही ले पाएंगे। डिसीजन तो व्यक्ति पहले भी ले रहा है लेकिन वो पुअर डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी तक फुल्ली डेवलप हुआ ही नहीं है
0: जी।
1: तो वो डिसीजंस कैसे लेगा? अपने इमोशंस के आधार पे, क्योंकि इमोशंस तो डेवलप हो चुके हैं
0: जी।
1: अब इसी कारण से आप देखेंगे कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो इमोशंस में आके या तो खुद को सेल्फ हार्म कर लेंगे, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, बोलेंगे कि हम तो सामने वाले से बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप उनको हर्ट करेंगे, अगर आप उन्हें पनिश करेंगे, या कई बार होता है पेरेंट्स या टीचर्स गुस्से में डांट देते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनके भले के लिए, बट उनको नहीं समझ में आता, उन्हें तो लगता है इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी है। अगेन एम्बेरसमेंट एक इमोशन है, तो वो हर प्रकार का इमोशन महसूस कर सकते होते हैं, लेकिन उस इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस कैसे करना है, उसे प्रोसेस कैसे करना है, और सामने वाला इस इमोशनलिटी से क्यों बिहेव कर रहा है, सामने वाला क्यों गुस्सा हो गया, क्यों नाराज हो गया, ये बात बच्चा समझ नहीं पाता है। और ये कारण है कि एक जो एक ब्रेन का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे ये सब चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे एक गार्डनर जब पेड़ पौधों की कटाई करता है उसको बोलते हैं प्रूनिंग, ऐसे ही ब्रेन भी प्रूनिंग करता है। यानी कि अगर आप बच्चे को उसके बढ़ते हुए उम्र में, जैसे 7 से 8 साल का एक बच्चा है, अगर आपने उसको म्यूजिक में डाल दिया तो वो म्यूजिक के बहुत सारे न्यूरॉन्स क्रिएट करेगा, एक न्यूरल सर्किट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेगा
0: जी।
1: लेकिन एक उम्र के आने के बाद वो उन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स की प्रूनिंग करेगा। जैसे कि आपके बच्चे ने अगर 2 साल म्यूजिक सीखा उसके बाद छोड़ दिया, तो बड़े होने के बाद वो 2 साल की जो न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे हैं जो वीक हो चुके हैं वो उनको निकाल देगा, उनको फ्लश आउट कर देगा, जिससे कि वो बाकी चीजों पर ध्यान दे सके। इसलिए भी जब बच्चे सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा चीजें देखते हैं, मूवीज देखते हैं जो क्राइम रिलेटेड है
0: जी,
1: और वो उसी चीज से ही एक्सपोज हो रहे होते हैं, अपने आसपास के वातावरण में भी उसी चीज से एक्सपोज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनका न्यूरल नेटवर्क किसी अलग प्रकार का डेवलप हो चुका होता है, और प्रूनिंग करने के बाद भी वो न्यूरल नेटवर्क जाते नहीं है, विच अगेन मेक्स देम मोर वल्नरेबल टू मेक सच रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स
0: जी। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हमारी बॉडी में भी उसी तरह से चलती है जैसे हम जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन हम सोचे कि एकदम से ही हम मैच्योर हो जाते हैं, पूरी डेवलपमेंट एक साथ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। मैम ने कहा 25 साल तक जो है हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती रहती है। तो हम जो है कोई भी डिसीजन एक तो इमोशनली होके ले लेते हैं, इमोशनली, तो हमें हमारे जो इमोशंस हैं उन्हें रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, और वो होते भी रहते हैं, लेकिन हमें उसमें थोड़ा सा समझ बनाने की जरूरत रहती है। खैर मैम ने और भी इसके पार्ट्स के बारे में बात की है, उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपनी बातों को ब्रेक देंगे और लेंगे एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इस समय आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्यारे से कार्यक्रम को, बहुत ही खास कार्यक्रम को आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ।
0: जी दोस्तों, तो इस जानकारी को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि खास करके ध्यान तो पेरेंट्स को ही देना होता है, बच्चों को तो देना ही है, लेकिन अगर पेरेंट्स नजरअंदाज करेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली नजरअंदाज करेंगे और उनकी फिर ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो हमारे हाथों से निकलती जाएंगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नल तो हमें वहीं से मिलता है, चाहे हम सही कर रहे हैं चाहे हम गलत कर रहे हैं। तो मैम, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, तो ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं?
1: देखिए, हम लोगों ने अभी एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तो समझा ही है
0: जी,
1: लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि हमारे सोशल एनवायरनमेंट में किस प्रकार के लोग हैं, उनकी किस प्रकार की सोच है, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है, वो किस प्रकार की हरकतें करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, आप चाहे तो यूट्यूब पे इसके बारे में देख भी सकते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में हम बताते हैं किया क्या गया था
0: जी।
1: कुछ छोटे बच्चों को, करीब 3 से 5 साल के बच्चों को एक रूम में रखा गया था जो कि एक ऑब्जर्वेशन के अंडर था। वहां पर देखा कि वहां पे टॉयज रखे हैं एंड हर कोई बच्चा टॉयज से खेल रहा है
0: जी।
1: उसके बाद एक एडल्ट उस रूम में आते हैं और वो एक डॉल को बहुत ज्यादा मारते हैं और वो मार के चले जाते हैं। सब बच्चों ने ऑब्जर्व किया होता है। उसके बाद उस एडल्ट के चले जाने के बाद वही बच्चे उस डॉल को, जिससे वो खेल रहे थे, प्यार कर रहे थे, उसको मारना शुरू कर देते। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये समझा गया था कि कैसे छोटे बच्चे मॉडलिंग सीखते हैं। इसको बोलते हैं मॉडलिंग, यानी कि जैसा हमने बड़ों को करते हुए देखा वैसा ही हम खुद भी करने लग जाए। और ये अपने आप बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से होती है। देखिए, छोटे से 3 से 5 साल के बच्चों को ये बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम्हें ये करना है। उन्होंने अपने आप ऑब्जर्व किया, वो बिहेवियर को लर्न किया और उसको एग्जीक्यूट करने लग गए। तो इसी प्रकार से यही कहने का अर्थ है कि

0: अगर हमारे वातावरण में ऐसे बड़े लोग हैं, तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे वातावरण में ऐसे दादा दादी हैं जो अपने ही बेटे और बहू को गाली देके संबोधित करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ उठाता है और उनके पास बच्चे हैं और बच्चा ऐसा देख रहे हैं, इनफैक्ट इतना ही नहीं जबकि टीचर्स भी बच्चों पर हाथ उठाते तब भी बच्चे देख रहे होते हैं। तो इसीलिए ही आज के समय पे जो ये बनाया गया है रूल की हाथ नहीं उठाना है, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है जो अधिकांश लोग नहीं समझते और कहते अरे हमारे जमाने पे तो चप्पल से मारा जाता था
1: जी।
0: तो इट्स लाइक दैट, इसका हर चीज के पीछे एक कारण होता है, उस कारण को समझना और उसका उसकी क्या महत्वता है उसको जानना भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे सोशल एनवायरमेंट में जैसे लोग हैं, हम बच्चा वैसा ही चीजों को सीखने लगेगा। यहाँ तक कि अगर आज के समय की बात की जाए रोचिका, तो आप देख ही रहे होंगे कि या तो फैमिलीज में दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है
1: जी बिल्कुल,
0: तो बच्चे जो है वो हेल्प के थ्रू पल बढ़ रहे हैं या दादा दादी के साथ पल बढ़ रहे हैं। अब दादा दादी की अगर भाषा ऐसी है तो वो वैसी ही चीजों को ग्रास्प करने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड जब बच्चे को प्राइमरी केयर गिवर्स यानी कि मम्मा और पापा, जब मम्मा पापा से उनको वो अटेंशन वो प्यार नहीं मिलता है तो उनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो नई परेशानियों को जन्म देने लग जाती हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको ADHD जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर ADD यानी कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, इस प्रकार की टेंडेंसीज उनके बिहेवियर में डेवलप होने लगती है क्योंकि आपने उनको सही मायने में अटेंशन दिया ही नहीं जिस प्रकार का अटेंशन आपका बच्चा डिजर्व करता था, जिसके कारणवश उनके अंदर इस प्रकार की हाइपर एक्टिविटी डेवलप हो गई है जहां पर वो अटेंशन चाहते हैं, या फिर ऐसा समझिए कि अटेंशन डेफिसिट यानी कि उनका कंसंट्रेशन फोकस या अटेंशन कम हो जाता है। तो आपको तब कंसर्न आता है कि अरे इसके तो मार्क्स कम आए हैं, या पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर ने कंप्लेन करी है कि ये फोकस नहीं कर पाता, ये शांति से बैठ नहीं पा रहा है। तो अब बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर वो कंपनसेटरी बिहेवियर उत्पन्न हो रहा है जहां पर अब पेरेंट्स को ध्यान देना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है कि पेरेंट्स अगर स्टार्टिंग से ही ध्यान दें तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो बच्चे के जीवन में आने से रोक सकते हैं। पेरेंट्स का इसीलिए बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर पेरेंट्स एक राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए, तो हमारा तो आग्रह यही है कि आप बच्चे ना ही करें। अफसोस की बात है रुचिका कि भारत जैसे देश में जहाँ पर हर एक इमोशन को हर एक रिश्ते को बहुत ही डिवाइन रूप से देखा जाता है
1: जी।
0: पूजा करी जाती है, लेकिन यही वो देश है जहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा आबादी है तो क्राइम रेट्स भी उतने ही ज्यादा
1: बढ़ते जा रहे हैं।
0: अब सोचिए कि इतनी आबादी जो लोग बढ़ा रहे हैं उसका क्या अर्थ है कि आप अनअवेयरनेस में रहकर आबादी बढ़ा रहे हो, आप अनअवेयरनेस में रहकर पेरेंट्स बन रहे हो, बच्चों को पैदा कर रहे हो और फिर उनको आप सही शिक्षा सही मार्गदर्शन सही वातावरण नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, और उसके बाद जब बच्चा हावी हो जाएगा तब आपको लगेगा हम क्या करें। तो इसलिए जितने भी न्यू कपल्स हैं आज की जनरेशन में, हम सबसे यही गुजारिश है कि आप सही एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिएगा पेरेंट्स बनने का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल, तो मैम के कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें जागरूकता के साथ आगे बढ़ना है, बिना जब आधा अधूरा ज्ञान जब हम लेते हैं ना तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होता ही है और वो परेशानियां ही खड़ी करता है। तो परेशानियों की तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो खास करके हमें प्रभावित करती हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, तो उस तरह से हमें इन बातों का ध्यान देना है। और मैम बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि किस तरह से हमें ध्यान देना है और जागरूक खुद को करना है। तो मैम इसके बारे में थोड़ा और हमारे दोस्तों को बताइए ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से जागरूक कर सके।
0: बिल्कुल, देखिए जब पेरेंट्स सेपरेशन या डिवोर्स या डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज इस प्रकार के वातावरण क्रिएट कर देते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, तब बच्चे के हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, सेरोटोनिन ड्रॉप हो चुका होता है, बच्चे के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, बच्चे के अंदर ऑक्सीटोसिन बहुत कम हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चा खुद से ही प्यार नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे को लगता है पेरेंट्स का ध्यान तो लड़ने में ही है, मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, और इसका मतलब आई एम नॉट वर्दी इनफ टू पे अटेंशन टू, आई एम नॉट लवेबल, बच्चे को ऐसा ही लगता रहता है। इसीलिए बच्चे की जो सेल्फ वर्थ है वो उसकी कम होने लगती है। अब देखिए, ऐसे में उनके ऊपर हार्मोनल इम्बैलेंस तो होंगे ही होंगे।
1: बिल्कुल।
0: और जब हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकते हैं। तो ऐसे में किसी बच्चे में इम्पैक्ट आ सकता है कि उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, उसके अंदर कामनेस या लव वाली भावना कम हो गई है लेकिन गुस्सा बढ़ चुका है। बच्चे के अंदर अपने आप को लेके इतने डाउट्स आ चुके हैं कि वो एकदम डिप्रेशन जैसी स्थिति में जा चुका है, जिसकी वजह से ही बच्चे के अंदर फिर एक समय के बाद सुसाइडल टेंडेंसीज और या फिर सेल्फ हार्म बिहेवियर्स देखे जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जो आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि बच्चे का एक प्रकार का क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप होने लगता है। क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे के अंदर एक प्रकार का आक्रोश जरूर ही आएगा कि मैं अपने आप को हार्म क्यों कर रहा हूँ, अब मैं सामने वाले को हार्म करूंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति की परिस्थिति ना एक समान नहीं होती है। आज अगर वो बच्चा खुद को डाउट कर रहा है तो कल को उसके अंदर ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट हो सकता है जो कि बड़े होकर वो दूसरों को हार्म करने का प्रयास करे या दूसरों को डाउट करे कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, सामने वाला ये है जिसमें गड़बड़ी है। तो मैं सामने वाले को क्वेश्चन करूंगा, उसको अटैक करूंगा, उसको परेशान करूंगा, अपने आप को नहीं। तो हमें इन सभी बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं
1: जी।
0: अगर कोई बच्चा ऐसे एक पॉवर्टी वाले इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहा है तो वहां पर आप देखेंगे कि लोगों का जो पेरेंट्स खुद है उनका खुद का एक जो मानसिक लेवल है वो उतना ज़्यादा खुद ज़्यादा डेवलप्ड हुआ नहीं होता है। ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जिनका मानसिक लेवल बहुत डेवलप्ड हुआ हो या यू नो मॉरल वैल्यूज हो। तो वातावरण में जिस प्रकार के लोग जिस प्रकार की चीज़ें कर रहे होंगे वैसा ही फिर बच्चा बनता जाता है। उसके अंदर पढ़ाई या एजुकेशन के प्रति अगर एक्सपोजर नहीं है, दुनियादारी के प्रति एक्सपोजर नहीं है, तो उसकी मानसिकता वैसी ही बनती जाएगी। अगर इट्स लाइक वही बात है ना कि अगर आप एक क्रिमिनल के साथ ही पल बढ़ रहे हो तो आपका क्रिमिनल माइंडसेट ही डेवलप हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ पल बढ़ रहे हो जहाँ पर लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, उनको छेड़ा जाता है, तो आप वही आदतों को ही पिक कर लेंगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट कि इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाती है। एजुकेशन के आधार पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने जीवन में संवार सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ये सारे ही फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, गिवन कि आज के समय पे जो सोशल मीडिया का जो एरा है, इट्स लाइक चेरी ऑन द केक वाली बात, बिकॉज इन अ रॉन्ग वे ऑब्वियसली, बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से कोई बाउंड्री नहीं बची
1: नहीं
0: है।
1: बिल्कुल
0: कोई सीमा ही नहीं है, हर चीज लिमिटलेस हो चुकी है, इनफिनाइट हो चुकी है। एंड इट्स लाइक कुछ भी अगर पेरिस में हो रहा है तो वो चीज आप यहाँ पर बैठ के देख सकते हो। और फोन हर घर में है, डजंट मैटर आप पॉवर्टी लाइन के बिलो हो या नहीं,
1: नहीं
0: पर फोन है सबके यहाँ पे, सोशल मीडिया है सबके यहाँ पे, और जो एक एक्सपोजर मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन से थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। सिर्फ ब्रेन के डेवलपमेंट पर ही नहीं, बट ऑल्सो रेदर हम किस प्रकार की आदतें पिक कर रहे हैं और हम किस तरह की चीजों के प्रति और ज्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। एंड यू नो ऑब्वियसली ड्रग्स इज अनदर। अब सोचिए, जब बच्चा डेवलपमेंटल स्टेज पर ही है
1: जी
0: और वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा ही कितना। वो एक एडिक्शन में बच्चा अगर जा चुका है ऑलरेडी, तो वो अपने आप को उससे बाहर निकालने में कितना ज्यादा असहाय महसूस करेगा, क्योंकि उसका ब्रेन ही उसका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी तक डेवलप ही
1: नहीं हुआ।
0: और अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि स्कूल इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर योर किड्स, सॉरी बट दैट्स नॉट ट्रू। स्कूल जितनी अपॉर्चुनिटीज बच्चे के ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बच्चे के हार्म के लिए भी प्रोवाइड करता है। तो आपको बहुत सतर्कता रखनी पड़ेगी कि आप किस प्रकार के स्कूल में बच्चे का दाखिला करा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अगर बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अब्यूज किया जा रहा है, यहाँ वहाँ पर उनकी रैगिंग ली जा रही है, उनको बुली किया जा रहा है, तो आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है अपने बच्चे को संभालने का, उसका साथ देने का और उसको अकेला ना छोड़ने का। तो ये सभी चीजों का बहुत खास तौर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है रुचिका।
1: जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और इससे हमें एक ही बात समझ में आती है और एक ही बात निकल कर आ रही है इन सभी बातों से कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैम ने कहा, अगर हम ड्रग्स की बात करें, अगर हम रैगिंग की बात करें, अगर हम बच्चों के एक तरह से किस तरह से किस माहौल में वो बड़े हो रहे हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है, उनके लाइफस्टाइल को प्रभावित कर रही है। तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है पेरेंट्स को भी। बच्चों को तभी समझ में आएगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है जब तक पेरेंट्स उन्हें समय देंगे, क्योंकि पेरेंट्स का समय बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। भले ही आप कितने भी बिजी हैं, क्योंकि आजकल हम सभी जानते हैं कि मदर फादर दोनों का वर्किंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले जो है थोड़ा सा सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेजना है तो उसके लिए थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि दोनों हाथ बैलेंस करके चले तो बढ़िया रहता है, लेकिन हम उस चक्कर में यानी कि पैसों के पीछे भागते भागते बच्चों के भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम फिर से वापिस आते हैं दोस्तों आप सभी के साथ, जुड़ते हैं इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

0: इसी गीत के बाद आप सबका स्वागत है मन संवाद एक प्रयास मन की ओर में, और आप बात कर रहे हैं रुचिका और प्रियशी के साथ।
1: जी दोस्तों, इस बहुत ही खास बातचीत के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं और मैम बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप और गहराई से आप सभी को इस जानकारी को बता रहे हैं ताकि आप अपने आप को अवेयर कर सके। तो आप कितना खुद को अवेयर करते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं, और सारी बातें एक तरफ होती हैं लेकिन उससे बचाव एक तरफ होता है, मेन बात तो वही होती है। तो मैम अब ये बात कर लेते हैं, हमारे दोस्त भी इस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे जागरूकता के साथ साथ, कि अगर बच्चे छोटी एज है चाहे किसी भी एज में अगर क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका माइंडसेट उस तरफ जा रहा है, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है?
0: देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को अटेंशन दें, ऑब्जर्व करें, उन्हें समझने का प्रयास करें। जब ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं तब बच्चा क्राइम वाले डायरेक्शन में बेसिकली बढ़ता जाता है। और इन सब के अर्ली साइंस होते हैं। अर्ली साइंस क्या क्या होते हैं आज हम आपको ये बताएंगे, जिससे आप ये समझ सके कि क्या हमारे बच्चे में भी ऐसा कुछ है, सो दैट आपको समझ में आ सके कि ये एक अर्ली स्टेज हो सकती है और इसका प्रिवेंशन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वो अर्ली साइंस बिहेवियर में कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। देखिए, थॉट, इमोशंस, बिहेवियर, ये तीन चीजें हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थॉट लेवल पर अगर आपको लगे कि बच्चा आए और बच्चा आपको इस प्रकार से बात करते हुए बोल दे कि अरे कोई बात नहीं तो मार दो, या बच्चा कभी होता है कि गुस्से में आके बोल देता है मैं थप्पड़ मार दूंगा, या बच्चा ऐसे सोचे, बच्चा रो रहा है, आप उसके पास गए और आपने उससे पूछा क्या हो गया, तो बच्चा बोले कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं, तो आप इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, बातें हैं, उनको आप लाइटली बिल्कुल ना लें, मजाक में बिल्कुल ना लें, हास्य वो उसका बिल्कुल मत बनाएं, बिकॉज ये बच्चे के लिए

0: बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि बच्चे के वो जो इमोशंस हैं, जो भाव हैं, उनको प्रोसेस कैसे करना है, सही है गलत है, उनको किस प्रकार से प्रोसेस करके किस तरीके से रिलीज करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रुप गैदरिंग्स में एम्पथी या कंपैशन या शेयरिंग, काइंडनेस नहीं दिखा पाते हैं, वो वेलकमिंग नहीं होते, उनके अंदर जेलेसी की भावना ज्यादा होती है, वो अपनी चीजों के प्रति पोजेसिव ज्यादा होते हैं। अगर कोई दोस्त उनका या प्ले ग्रुप में है और कोई बच्चा आया और बच्चे ने उसका टॉय ले लिया तो उसने उठा के थप्पड़ी मार दिया या बहुत ज्यादा रोया और उसने अपना टॉय ही तोड़ दिया, तो इस प्रकार के बिहेवियर्स जो हैं वो भी कंसर्निंग होते हैं। अगर आप ऐसा देखें कि बच्चा जो है, लेट्स से आपका 5-6 साल का हो गया है, वो बाहर जाता है प्लेग्राउंड में और बच्चों के साथ ग्रुप में खेलता है, पर उसके वहाँ पे अचानक से ना फाइट्स ज़्यादा हो जाती है, और किसी की शायद नहीं होती हो उतनी, लेकिन आपके बच्चे की ज़्यादा फाइट्स हो जाती हैं, वो राइट इंडिकेशन नहीं है। वो मतलब बच्चे को कुछ परेशान कर रहा है, बच्चे को नहीं पता है कि अगर रिजेक्शन मिल रही है या गेम खेलते खेलते वो फेल हो गए तो उस फेलियर को कैसे लेना है, एक्सेप्ट कैसे करना है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे अभी, तो आगे चल के उनका जो एक सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चा जो है वो अगर गाली का प्रयोग कर रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, मम्मी पर हाथ उठा देता है, बच्चे ने एक बार ऐसा किया हो और आपने उसको समझाया हो, उसको समझ में आ गया हो, तो वो बात अलग होती है, पर बच्चा ऐसा बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है और आपके समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो वो राइट इंडिकेशन नहीं है। बच्चा जानवरों को मार देता है, कीड़े मकौड़ों को मार देता है, गिलहरी दिखी मार दिया, कुत्ता दिखा मार दिया, किक मार दी या पत्थर फेंक के मार दिया, ये सारे साइंस अच्छे नहीं हैं। बच्चा अगर अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र से बड़ी बातें करने लगे इन अ वे जो थ्रेटनिंग हो टू द सर्वाइवल ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, जैसे एक केस आया था, वो बच्चा ऐसी बातें करता था, लाइक बच्चा सिर्फ 7 साल का है और बच्चा ऐसी बात करता है कि अरे बुढ़ाऊ तुम क्या करोगे, रहने दो, ये सारा तो वैसे ही मेरा है, मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही होनी है ना। तो बच्चे के ऐसे लव्स हैं अपने दादा के लिए, बच्चा अपनी माँ को मारता है, छत पे जाके खड़े होके छोटे छोटे कंकड़ लोगों पर फेंकता है, कुत्ते को मार देता है और हंसता है, ये सारे साइंस हैं कि बच्चे के अंदर कंपैशन नहीं है, बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है टूवर्ड्स एल्डर्स, और ये साइंस बहुत अलार्मिंग है, ये अच्छे साइंस नहीं है। बच्चे को गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, बच्चे अपने से बड़ी जो लड़कियां हैं उनको प्रपोज करता रहेगा और अगर कोई मना करेगा तो उस पर गुस्सा करेगा, उस पर भी हाथ उठा देगा, है बच्चा ही, और लोग क्या सोचेंगे, तो छोटा है ना भी बच्चा, इसको अकल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसे अकल नहीं है, उसका ब्रेन डेवलपमेंटल स्टेज में ज़रूर है, लेकिन जिस प्रकार के वो बिहेवियर शो कर रहा है वो चिंताजनक है। देखिए, ये हम लोग सिर्फ छोटे बच्चों की जैसे अभी बात कर रहे हैं या यंग एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, आप कितने भी क्रिमिनल्स देख लीजिए, वो जितने भी बड़ी उम्र के हों, उन सब के अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे या आप उनका बचपना देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनके बचपन में ही उन्होंने साइंस शो करनी स्टार्ट कर दिए थे। तो बच्चा अगर स्कूल में रेस्टिगेट हो रहा है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चला रहा है, स्कूटी चला रहा है, ये सारे ही चिंताजनक बातें हैं। तो आपको इन सब का ख्याल रखना होगा। बच्चे तो आज के समय पे क्योंकि फोन है तो उम्र से पहले ही
1: बिल्कुल सीख ले रहे हैं,
0: सब चीजें देखते हैं, है ना, चाहे वो फोन देख रहे हो या कुछ और, तो इट्स समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग। तो माता पिता को खास तौर पे बड़ा ही ख्याल रखना है, अगर वो अर्ली साइंस में ही देख लेते हैं कि ये चिंताजनक चीजें हैं या बच्चा इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको सिखाना पड़ेगा
1: जी,
0: बताना पड़ेगा कि ये इमोशन को जब आप महसूस करो तो इस इमोशन को क्या कहते हैं, आप क्या कर सकते हो, कूल डाउन कैसे कर सकते हो, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट वे क्या है, इस प्रकार का जो एक लर्निंग है वो देना बहुत ज्यादा आवश्यक है
1: जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो हमें पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चा समझ के उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर वही नजरअंदाजगी हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बन जाती है, खास करके बच्चों की जिंदगी के लिए। तो इन्हीं साइंस को हमें ध्यान में रखना है और बच्चों को अच्छे से गाइड करना है, अच्छे से उन्हें समझाना है कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चा समझ के उनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालना,
0: डेफिनेट
1: उन्हें बढ़ावा नहीं देना है कि कल को वो किसी और बड़ी बात को अंजाम दे दे और फिर बाद में पछतावा हो तो उसका क्या फायदा। तो समय रहते चीजों को समझिए और उन्हें उन साइंस को पहचानिए और बच्चे की जिंदगी को संवारिए। तो दोस्तों बहुत ही खास जानकारी आप सभी के साथ साझा की है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बात को लेकर जागरूक होंगे और अपने अपनों को भी जागरूक करेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई जवाब हमारे इन बातों से कि आपको लगता है कि कुछ छूट गया है ये भी ऐड होना चाहिए, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
0: 9354134057। एक बार फिर से रिपीट करेंगे 9354134057।
1: जी दोस्तों, तो नंबर आप सभी को बता दिया है और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस स्टेज में जा चुका है और जरूरत है उन्हें एक तरह से मोटिवेशन की, काउंसलिंग की, तो उसमें झिझकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, लोगों की बातें भी नहीं है। तो आप हमारे सेंटर आ सकते हैं, बच्चों को बिना किसी डर के कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आप उनका काउंसलिंग सेशन करा सकते हैं। तो हमारा पता रहेगा
0: वैराग्य माइंड एंड वेलनेस सेंटर, शीला, अपोजिट मांझी पुल, धर्मशाला।
1: जी दोस्तों, तो आप कभी भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सवालों के साथ, जवाब के भी साथ, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बातें जिनका जवाब आपके पास हो वो भी आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं, और कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में बात होना जरूरी है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब समय हो गया है दोस्तों आप सभी से अलविदा लेने का। आज का ये बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी ने एंजॉय किया, अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
0: प्रेयसी के साथ।
1: जी तो दोस्तों, दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

0: नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।
1: 46 47 48 49 50।
2: टिकला भी करती है
3: भैया जी ने।

सत्यो रेडियो कुंचन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियों रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।
1: Tell me what you want.

श्रोताओ, रेडियो कुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

सत्यो रेडियो कुंचन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 मेगाहर्ट्ज ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं एपेक्स प्लस पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
9: Oh no!
7: तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर हुई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशो तो पहले तो तुहां सारे दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तुह सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा काम कार है से जरूर करा दे उड़े न। तो सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। कने इसी कन्ने तुह जिहड़ा बिल्कुल फेसबुक लाइव जिहड़ा है सभी अहां जो दिखी सकदे कने वैसे तो तुह सुनदे हन रेडियो गुंजन धर्मशाला कने अपना मनपसंद कार्यक्रम माटी दी महक। दर्शो तो कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जिहड़ा अहां दा नंबर है से जरूर तुह तक पहुँचाइंदे न, क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो तुह इस नंबर कन्ने कॉल करी सकदे या टैक्स मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टैक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। ता नंबर मैं तुह तक दिता है पहुँचाई कने हूँ तुह दा काम है बस कॉल करा कने रेडियो गुंजन धर्मशाला कने जुड़िया कने अपनी जेड़ा पसंद दा गीत है से जरूर तुह इस कार्यक्रम च सुनी सकदे। ता अजकने दिने दी अहां गल करिए ता अजकना जेड़ा दिन है से अहां वास्ते बेहतर खास है, तुह वास्ते भी खास है कने अहां वास्ते

0: ये तो कुछ ना कुछ जड़े से हाँ कुछ गल्ला जड़ा ने से नजरअंदाज कर देना जी,
1: जी।
0: क्योंकि हाँ हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ जड़े से दिखते रहते ना, या अपने आसपास भी जरूर जड़ा जंगल एन बन एन तिना जो दिखते ना कुछ तिना चाह आग लगाई देना, या पता नहीं मतलब दिखा अगर हाँ बना च आग लगा देना तो हाँ खुद का भी जड़ा नुकसान है से जरूर कर देना जी
1: मैडम बड़ा बड़ा पाप है। कोई
0: जी बड़ा जी
1: कोई के रूप है रूप कोई कितनी
0: जी
1: है कोई क्या कोई क्या
0: जी
1: सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ
0: जी जी
1: अपने मकसद है कि मतलब कोई नुकसान कर दिया तो
0: जी
1: बंदे सोच समझ जाए कि आपको नहीं लाना है।
0: जी जी क्योंकि सोच विचार अगर हाँ खुद कर गए ताई यहाँ अपने जिड़ा
1: जी
0: जीव जंतु अंतिना जो बचाई
1: जी
0: सकते कने अपने जीवन जो भी बचाई सकते ना जी,
1: ये तो
0: हमेशा
1: बड़ा बड़ा
0: जी हमेशा हाँ ये प्रेरणा दिन देना कि पेड़ लगा पर हाँ कुथु पेड़ लगा देना या कुथु वहाँ अपने जंगला कन्ने क्या नुकसान करा देना जी।
1: पेड़
0: जी जी पेड़ जेड़ा लगे ना वहाँ उन्हें दी कदर नहीं करा देना जी। जी जी ता अशोक जी आज तुम कुंदिया गीत जेड़े से सुनना पसंद करगी
1: मैंने कम मीठा करो दो रोटी खानी
0: जी कुंडिया
1: या दो रोटी
0: जी, खानिया दो रोटियां जी जरूर तुहदी जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: जी तुहदा
1: धन्यवाद
0: जी।
1: धन्यवाद।
0: ए तुह सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुह सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ी सकते कन्ने यहाँ कन्ने गल बात जरूर जड़े से करी सकते, अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी कर देना गल बात। हेलो
1: नमस्कार जी। बस
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न
1: ठीक ठाक।
0: जी, तो हाँ अपना ना दसी दिया कने कुहा जगह दे रहने आले ने जरूर दसी दिया जी
1: हाँ धर्मशाला दारू दे रहने वाले ने।
0: जी धर्मशाला दारनू दे रहने आले ना जी
1: हाँ जी
0: जी ता आज तो हाँ
1: मेरा
0: के
1: नाम मेरा हरि सिंह जी।
0: जी ना भी जरूर दसना है ना जी, ताई ता बाकी श्रोता जो भी पता लगना कि इसा जगह ते जुड़े हो ना कने तोहंदा जिड़ा ना वे ना ते ही ताहंदी पहचान हुंदी ना जी।
1: हाँ
0: जी तो जिन्ना तुहां अहां दी पहचान कर दे ना ते ही कने वैसे भी हुण तुहां फेसबुक लाइव भी अहां जो दिखी सकदे ना जी
1: जी महाराज
0: जी जी ता हरी सिंह जी आज तुहां क्या काम कार छेड़िया क्या करा दे आज तुहां
1: तहसीलदार टांगा घूल के खबर ना पड़ो राम करा कर।
0: जी। अच्छा वैसे भी दोपहर दा समय है ना जी, थोड़ा देर आराम करना भी जरूरी है यहाँ वास्ते
1: हाँ जी हाँ जी भाई
0: जी, ता अंबा दियां खटियां पाई रखियां तुहां
1: खटिया से पाने चाम भी नहीं होंगे पर आवे
0: जी। अच्छा
1: ना
0: जी
1: आवे मुल्ले लेना ताई खटिया
0: जी अच्छा मुल्ला लेना पौंदे तुहां जो
1: हाँ तो दार तो आप तो दार में रूठते आऊंगा।
0: जी दारनुच नहीं है नाम जी, ता चलो दारनुच नहीं है ना पर कुछ ना कुछ कई बार होंगे ना कि यहाँ दे रिश्तेदारी च भी अंब जेड़ा से आते तो हाँ तिना जो भी बोली दे कि यहाँ जो खटियाई जेड़ा ऐसे करी रखने हो ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी जी ता हरी सिंह जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जेड़ा ऐसे सुनना पसंद करके
1: मैं सुनना कमल नहरी है ना माता का भजन है तल्ले वाली माता
0: जी कुंडिया
1: तल्ले वाली माता उच्ची धारा मंदिर तेरा माता
0: जी
1: तल्ले वाली है।
0: जी जी जरूर ये फरमाइश ये भजन तुह तक पहुँचा दी जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: थोड़ा जी धन्यवाद महाराज।
0: जी। दर्शो तो तुह जो ले करी चल देना फरमाइश दी और कने अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है सभी इसा प्यारी दी या फरमाइशा कने कर देना।

0: ये सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी अहां कर देन गल बात। हेलो
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न जी? अहां भी ठीक ठाक है जी। तुह कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना के है जी?
1: सिद्धवाड़ी से बोलो, मेरे नाम वंदना देवी है
0: जी। सिद्धवाड़ी ते बोला दे वंदना जी।
1: जी
0: तो वंदना जी, क्या काम कार तुहां लगया, क्या करा दे?
1: बात तो सुनो, मां लिखा रे गर्मी ज्यादा
0: जी। अच्छा, गर्मी जड़े से ज्यादा है ना जी?
1: हां जी।

0: अरुण छुणुआ कुथू ते आईया दो जनिया जी। जरूर तुहुंदी जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे हन जी, जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहुंदा जी। अगले जिहड़ा श्रोता न तिना कन्ने भी करदे न गल बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्ते।
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है?
1: ठीक ठाक है ना।
0: हां जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां ठीक ठाक है ना?
1: हां जी ठीक ठाक। तो पुछी है बड़ी भारी बिजली आई है, चली गई कने गर्मी बड़ी भारी
0: जी। अच्छा, लाइट जड़ा है से नहीं है
1: ना? राती भी नहीं है, दिन भी नहीं है
0: जी। अच्छा, दिन भी नहीं है जी। और नोईता जी?
1: बस नोईता जी छोड़े दे अम्बलन दे काला हुआ दे
0: जी जी
1: बोरू की फैक्ट्री चल रही पाई थे
0: जी। अच्छा,
1: कने उन बैठे हो बाहर
0: जी? अच्छा,
1: बरामदे
0: हवा चली है जी जी। हवा चली हो गए, चली हो भी है कि गर्मी हवा चली हो?
1: नहीं चली हो, थोड़ी थोड़ी सी तो पूरी बड़ी कटाके हुई है
0: जी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी हवा जीड़ा ऐसे चली हो जी। और नई ताजी तपोबंदी?
1: बस बड़े ख्याल है, फर्स्ट क्लास हूँ, गाड़ियाँ तैयारियाँ कर रहे हो उधर लगाने
0: जी। अच्छा, तोड़ा
1: तोड़ा लगी थी हो गाँव गाँव में
0: जी जी,
1: पूरे लूंगी थी
0: जी, पूरे दी तैयारी जीड़ा ऐसे शुरू होई गई ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, तुम तो क्या बात, पटियाँ थी मैंने बहुत पूरे तैयारी उर लूंगी थी खरा
0: जी।
1: तोड़ा तोड़नी है उन तने पानी पाई आने बाद कोई हफ्ते बाद पानी पाई आने
0: जी।
1: हाँ
0: जी, तो फिर ते काम जड़ा ना से पे आने उड़ना जी थोड़े दिन।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पे आने महीना डेढ़ महीना था उन फुर्सत नहीं
0: जी। चलो काम तो डेढ़ महीना ही पौंदे, पर साल भर दी कमाई जड़ा से हाँ कमाई लेंदे ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, कमाई तो लेंदे पर रोटी खाने की फुर्सत नहीं होंगी ना
0: जी। नहीं जी, रोटी जड़ा से समय अनुसार खानी है, क्योंकि तो हाँ जो पता है कि काम भी
1: है। आ कुछ ही वक्त है ध्यान होंगे पतिये जो है, पानी नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो
0: नहीं
1: है, कई बार नहीं रहता ठीक है, ये भी आठ आठ नौ नौ बजे पतिये का
0: जी जी।
1: हाँ
0: जी, तो जरूर अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखना है, कने काम भी करना है, क्योंकि काम करना भी जरूरी है, अपनी सेहत भी जरूरी है ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी, खेती है तुमने छड़ी दीजिए
0: जी जी,
1: कमाना कौन
0: जी जी। ताज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करिए जी।
1: आज आज बड़ा प्यारा गीत सोचे मैं
0: जी,
1: राम आया राम दा बुलावा बुढ़ी मन गठड़ी
0: जी। आया बुलाव दा, आया राम दा बुलावा ना जी।
1: हाँ जी, बुढ़ी मन गठड़ी
0: जी। जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचांदे जी, चुनने वास्ते धन्यवाद जी तुहंदा।
1: बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
0: जी। ए है तो हाँ सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अगले जिहड़ा श्रोता न सभी अहां जो कॉल पर कॉल करा दे न, जरूर तिना कन्ने भी अहां गलबात जिहड़ी से करनी है, कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकदे, कन्ने अहां कन्ने गलबात जिहड़ी से जरूर करी सकदे। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
2: हां जी ठीक ठाक। तुहां
0: जी? यहां भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथू ते बोला दे, कने तुहांदा ना के है जी?
2: हां बोला दे, बीरते ते
0: जी, बीरते ते जी, अपना नाम भी जरूर दसी दिया जी।
2: स्वर्णा
0: जी। स्वर्णा जी, बड़े दिना बाद तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद कीता ना जी।
2: हां जी जी, ओ मैं जी मौका देना चाहिए ना थोड़ा दिया
0: जी, मौका तो सारे जो ही देना चाहिए था ना जी।
2: अरे अरे बारे यहां कर दे रहा फोन तो और निकाल सुनना
0: जी जी, सारे यूं ही सुनना चाहिए था ना जी।
2: अरे
0: जी, अपना पहाड़ी कार्यक्रम है ना जी।
2: हां
0: जी जी, स्वर्णा जी कांगड़े वाले दे क्या हाल चाल है, क्या काम कार छेड़ा
2: तो? कांगड़े वाले क्या, कल तूफान चल रहा
0: जी? अच्छा, तूफान तो बड़ा ज्यादा चल रहा था ना जी कल?
2: हां जी पूरी रात बिजली

0: जी अच्छा, बिजली जड़े से नहीं थी
1: ना,
0: जी, इस टाइम है बिजली
1: इस टाइम था यही हो।
0: जी। अच्छा ता खरी गाल लेना जी
1: जी नौ
0: जी, ता और नोईता जी
1: दादी क्या सुन प्राणी है ना।
0: जी, ता सुवर्णा जी, हाँ जी, ऐसे बार बार प्रकृति ऊपर गलबात जिड़े से करते रहते ना जी,
1: जी
0: कने करना भी बनता है, क्योंकि कई बार होता ना कि यहाँ कुछ ना कुछ अपना जिड़ा फायदा है ऐसे दिखने के चक्कर, जहाँ प्रकृति जो नुकसान जिड़े से पहुँचाना शुरू हो जाते ना जी
1: जी
0: जी तहाँ दे जितने भी वन आन जंगल आन, कुछ ना कुछ तो हाँ अपने आसपास भी दिखा दे होने न कि यहाँ आग लगाई दे दे या आग खुद लगा दी, इसे कोई पता नहीं है ना जी। पर नुकसान
1: जी
0: कितना जो भरना पौधा से भी थोड़ा दिया सोच विचार करने दी यहाँ जो जरूरत है ना जी
1: हाँ जी
0: जी तो तुम्हें क्या लगता जंगल जड़न से यहाँ वास्ते कितने ज्यादा जरूरी है न कने?
1: नहीं जी सुना थे दो दो बूटे बन रहे दो पेड़ बन रहे थे सुदा पेड़ ला दी ना थे जी
0: जी अच्छा, दो जिड़ा पेड़ अंश है, अगर कट्टा दे भी अंत 10 पेड़ या एक पेड़ एक पौधा भी लगाएं देना सभी बड़ा है ना जी
1: बड़ी गल है
0: जी अगर हाँ एक पौधा लगा देना तो उस दी देख रेख भी करना आहदा ही काम है ना जी
1: हाँ
0: जी ता स्वर्णा जी, आज तो हाँ कुंडिया जिड़ा गीत ऐसे सुनना पसंद करके
1: जी हाँ जी बाबा तुहारी नगरी ने मोर नच दे नौ
0: जी बाबा जी,
1: मोर नच दे ओ बाबा तेरी नगरी में। हाँ
0: ता तो हाँ जो ये गीत गाना भी होंदा था जरूर दो बोल हाँ जो सुनाई दिन जी
1: मोर नच दे ओ बाबा तेरी नगरी में, मोर नच दे ओ बाबा तेरी नगरी में।
0: जी। बड़े प्यारे जिड़ा बोल से तो हाँ गाए कने कुछ ना कुछ ये चीज़ें भी यहाँ जो लुप्त होनी है दिखने मिला दी है ना जी।
1: जी
0: हाँ पहले होंदा था अगर शादी विवाह होंदा था ता 2 महीने 3 महीने पहले जिड़े से शुरुआत हो जाती थी ना जी,
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: उन्हें दी यहाँ गाल करिए तो हर कोई अपनी ज़िंदगी जितना ज़्यादा बिजी है या सोशल मीडिया दी यहाँ गाल करिए तो कुछ ना कुछ ही चलो फ़ायदे वास्ते अगर हाँ सोशल मीडिया का यूज़ करा देना ता तो अच्छी गाल है, कन अगर हाँ अपना तिथु टाइम वेस्ट करा देना तो से कुछ ना कुछ यहाँ समय दी बर्बादी भी ज़रूर करा देना जी
1: जी
0: जी ता स्वर्णा जी, ये गीत ये भजन तुह तक पहुँचान दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: थैंक यू।
0: जी। ये है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तुह सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, कन्ने आ चाहां जिड़ा गल बात करा देना से करा देना कि प्रकृति का जिड़ा ख्याल है से यहाँ किस प्रकार रखा देना, अपने जिड़ा नदियाँ न अपने जिड़ा बाकी पेड़ पौधे न तिना दा ख्याल जिड़े से यहाँ किस प्रकार रखा दे, ख्याल तो हाँ बिल्कुल जिड़े से नहीं रखा दे, तो सारे जो ही पता है कने तो सारे ही थोड़ा दिया ज़रूर गौर जिड़े से करा दे उन्हें न, कई बार हाँ जिड़े से अपने आसपास दिख देना या जंगला च दिख देना तो कुछ ना कुछ आग जड़े से यहाँ जो दिखने जो मिलती है तो ये नुकसान अहाँ करा दे, इसी वजह ने ही गर्मी जड़े से ज़्यादा बढ़ा दी, हर कोई यही चाहता है कि यहाँ जो ठंडी ठंडी हवा जड़े से मिल रहा है, पर ठंडी हवा कुत्ते मिलनी चाहिए तो हाँ जंगला जो ही जलाई दे दे ता से ठंडी हवा हाँ जो नहीं मिलनी, ता अपने जेड़ा जंगल अन बन अन तिना दा जरूर ख्याल रखा कने अपना भी ख्याल रखा, क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा सफर है ना से बड़ा प्यार है, अजकना जेड़ा दिन है से यहाँ किस प्रकार निकाल देना या किस प्रकार इंजॉय कर देना से यहाँ पर निर्भर कर दे, तो श्रोताओं थोड़ा दिया फ्री ते कार्यक्रम का जिड़ा माहौल है ना से चेंज कर देना, क्योंकि अहाँ दे जिड़ा श्रोता है ना से इंतज़ार पर हों देना कि कालू दिया फरमाइशा से यहाँ तुहाँ तक पहुँचा देना कने तुहाँ सुन देना, अगली जिड़ा फरमाइश है से ज़रूर तुहाँ तक पहुँचानी है कने ये भी दसना है कि ये फरमाइश अहाँ जो कुत्ते आई हुए है, ये फरमाइश अहाँ जो आई हुए दारनू ते कने तीना दा ना वे हरी सिंह जी तीना तक कहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना, तो हाँ सारे भी इस भजन जो जरूर जेड़ा इंजॉय है से करा।

कानवी दशमलव 2 MHz पर AI तुहां सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तुहां सारे ही सुनिया ही प्यारा दिया भजन प्यारी दे फरमाइश कन्ने बाकी जेड़ा श्रोता ने सभी जरूर फरमाइशा जेड़ा ने सियां जो व्हाट्सएप दे माध्यम ने भी करा देना कन्ने टेक्स्ट मैसेज भी जरूर अहां जो करा देना तशो तो गलबात अहां करा देना प्रकृति दी कने तो हां सारे जो पता है कि प्रकृति दा जेड़ा ख्याल है से रखना हां वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रकृति जेड़े से अहां वास्ते हमेशा अच्छा कर दी है पर अहां कितना की प्रकृति वास्ते अच्छा करा दे ज़रूर है सोची करी दिखा सोच विचार जेड़े से ज़रूर करा क्योंकि सोच विचार करके ताई तो तुहां अपनी प्रकृति दी जेड़ा रक्षा है से जरूर करी सकते कने इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ने वास्ते जेड़ा हां दा नंबर है सभी तुहां नोट करा नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तशो तो इसी कन्ने कार्यक्रम अगे बढ़ते न कन्ने तो हम जो लेकर चलते न फरमाइश दी और सुनते नि सा प्यारी दी या फरमाइश है जो तुह सारी भी इंजॉय करा

0: ये तुह सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारे कार्यक्रम सुना दिन अपनी रेडियो तो शशि कन्ने माटी दी महक तो फिर तुह सारे दी माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। तो तुह सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़ सकते कन्ने जेड़ा तुह दियां फरमाइशां सभी जरूर इस कार्यक्रम च सुनी सकते। ताशो तो मौसम दी ओर अगर हाँ अपना जेड़ा ध्यान है से लगांदे न, क्योंकि मौसम जेड़े से अपना बदलाव समय के अनुसार लेंदा रहिंदा है। तो समय के अनुसार चलना भी हाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है। मौसम बदलाव लेंदा है कन्ने हाँ भी मौसम के अनुसार अपनी जिंदगी च अग्गै बढ़ते न, अग्गें बढ़ना भी अहां वास्ते जरूरी है। कन्ने अहां दे जेड़ा श्रोता न सभी जरूर इंतजार करा दे न कि जेड़ा फरमाइशां न से कालू दिया अहां तिना तक पहुँचांदे न। इंतजार दी घड़ी तो हमेशा सारे वास्ते लंबी होंदी, पर जेड़ा इस कार्यक्रम दा सफर तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तशो तो जेड़ा कोई भी अहां दे रस्ते न, कई बार होंदा ना कि रस्तियां जाने दा घरे दा कोई भी रस्ता है अहां जेड़ा से तिदी पर कोई भी रोक जेड़ा से नहीं लगाई सकते, क्योंकि ये जेड़ा कानूनी गैर कानूनी जेड़ा है। क्योंकि कई बार होंदा ना कि कई होंदे कि हमेशा यही बोलते कि अहां अहां दा रस्ता है तो तुहां जेड़ा से नहीं जाना है, पर जेड़ा गैर कानूनी अगर अहां करदे न तो कुथी ना कुथी अहां अपने जेड़ा रस्ते न या कुसी दा भी रस्ता है अहां ये नहीं बोली सकते कि अहां दा रस्ता है तो तुहां इन चीज़ जेड़ा इसे नहीं जाना है। तो ये जेड़ा जानकारी से जरूर तुहां तक पहुंचाई है कने तुहां सारी भी इस कार्यक्रम दे सफर जहां कन्ने जुड़ी सकते। इसी कन्ने अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचाते न, सुन दे निसा प्यारी दिया फरमाइशा जो
1: बड़ा ही प्यारा है। मैं सोच रही ना तिस डांस करते हैं।

रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारी कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे ये गीत ये फरमाइश इंजॉय की थी। इसा फरमाइश का अहाँ जिक्र करिए ता इस ये फरमाइश अहाँ तक पहुँचियो है सिद्धबाड़ी ते कने तिना दा नाम है रिम्पी जी। रिम्पी जी तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय की थी। कने फिर ते अहाँ वापिस अपनी जिड़ा गल बात है तिहा पर वापिस जिड़े से आई आते हैं तो हाँ सारे जो पता है कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कने इसका जिड़ा समय तुह तक रेंद्द से रेंद्द 2-3 बजे तक। कने आज अहाँ जिड़ा गलबात छेड़ियो है गलबात तुह तक पहुँचा देन से गलबात अहाँ ये पहुँचा देन कि प्रकृति का जिड़ा महत्व अहाँ दे जीवन च कितना ज़्यादा है। अहाँ हर दिन कोई ना कोई खास दिन जिड़े से बना देन पर खास दिन बनाना ही अहाँ वास्ते जरूरी नहीं है न। हमेशा अहाँ जिड़ा प्रकृति का नुकसान जिड़े से कुथी ना कुथी कर देन अगर अहाँ पुराने समय दियाँ जिड़ा गल्ला न तिना जो फ्री ते तरोताज़ा करन तो कुथी ना कुथी से अहाँ जो अपनी प्रकृति कन्ने बिताए जिड़ा लम्हे न तिना दी झलक जिड़े से जरूर दसदे। पानी दी अहाँ गल करिए ता पानी ज़्यादातर अहाँ बोड़ियाँ जो जिड़े से जांदे थे कन्ने बोड़ियाँ दा पानी जिड़े से पींदे थे कन्ने थोड़ा दिया जिड़ा अहाँ दा स्वास्थ्य है सभी ठीक रहिंदा था कन्ने अहाँ फिट एंड जिड़ा तंदुरुस्त है से रहिंदे थे। कन्ने एक गल भी है कि नेचुरल पानी था नेचुरल पानी जिड़े से अहाँ पींदे थे पर तो हाँ अपने आस पास दिखते होने न से बोड़ियाँ जिड़ा न से अहाँ जो हूँ हैं तो से बोड़ियाँ हैं पर अहाँ तिना दी साफ सफाई जिड़े से बिल्कुल नहीं करते न कने तिना बोड़ियाँ दा पानी जिड़े से भी यूज़ जिड़े से नहीं करते न कुथी कुथी जिड़े से बोड़ियाँ दा जिड़ा पानी है से अहाँ पींदे न कने अपनी जिड़ा नेचुरल चीज़ा न तिना दा उपयोग जिड़े से ज़रूर करते न। पर इसी कने अहाँ गल करन बोड़ियाँ जिड़े न से घर ते थोड़ी दूर होंदियाँ थियाँ कने मिली जुली करी अहाँ गाँव की गल करन तो सारे ही जानते थे कने पानी जिड़े से भरी करी लौंदे थे कने बुजुर्ग जिड़न से हमेशा ही बोलते थे कि घड़े का पानी बोड़ियाँ का पानी जिड़े से सबसे बेस्ट है। पर आजकल मॉडर्न है थोड़ा दिया हाँ अपनी जिंदगी जो अगे बढ़ा देन जागरूक भी हो दे पर कुथी ना कुथी जिड़ा फ्रिज का पानी है से अहाँ दी सेहत जो बिगाड़ दे कने से सब कुछ तुहंदे सामने ही है क्योंकि अहाँ 10 मिनट का जिड़ा काम है 10 मिनट का जिड़ा काम है से अहाँ सिर्फ 5 मिनट च निपटाना चाहते तो कुथी ना कुथी अहाँ अपनी सेहत जो नज़रअंदाज जिड़े से ज़रूर करा देन। ताशो तो अहाँ तुह जो नज़रअंदाज नहीं करना है अहाँ जो भी याद है कि जिड़ा तुहन दियाँ फरमाइशा न से ज़रूर तुह तक पहुँचानिया न चल देन सुन देन अगली फरमाइश तुह तक पहुँचा देन पर ये भी दसी देन कि ये फरमाइश अहाँ तक कि ना पहुँची हो। ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची हो है व्हाट्सएप दे माध्यम ने कने तिना दा नाम है सभी तुह तक जरूर दस देन। ओम प्रकाश जी दी ये फरमाइश है कने से रहने वाले न अरनी ते तिना तक अहाँ ये भजन पहुँचा देन तुह सारे भी इंजॉय करा कने जितने भी अहाँ दे श्रोता न फेसबुक जेड़ा श्रोता न सभी अहाँ कन्ने जुड़े न तिना तक भी अहाँ ये गीत ये फरमाइश पहुँचा देना।

कानवी दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला ता श्रोताओं सरकारी कार्य जेड़ा न दीदी जेड़ा हवाई यात्रा है से तुहां जरूर जेड़े से करी सकदे कनती दा अवसर जेड़े से हिमाचल जो मिली है ता जरूर हमें हिमाचल सरकार ने जेड़ा मंजूरी है से दे दी हुए दर्शोताओं तुम सारे ही कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्नै कन्नै इस कार्यक्रम दा जेड़ा सफ़र है से तुम तक रहा है दो ते तीन बजे तक थोड़ा दे अग्गे बढ़ते न क्योंकि फरमाइशा दा जेड़ा दौर है सियाल ज़्यादा है कन्नै समय जेड़ा है सियाल बड़ा कम है सुनील जी की फरमाइश जेगी तहां तिना तक पहुंचा देन कने से रहने वाले न कोठियां जलोड़ते

स्वर्णा जी की फरमाइश भजन अह तीन तक पहुँचाया कने से रहने वाले न कांगड़े ते ऐसी कने तुह सारे जी पता है कि माटी दी मह कार्यक्रम का सफर तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक कने जिन्हें श्रोतन की फरमाइश अह तीन तक नहीं पहुँचाई पाई उन्हें तीन ते अहाँ माफ़ी जड़ा से जरूर चाहते हैं क्योंकि समय जड़ा से हमेशा चलता रहा समय के अनुसार चलना हाँ वास्ते जरूरी है। इसी कन्ने तुह सारी अपनी रेडियो 2 शशि जो दिया अनुमति।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर, 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जन कल्याण के।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
4: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
5: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
4: Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
5: अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका, और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंगफोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ

0: विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex Plus Point Authorized Admission Center, नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
5: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पीठ पीछे बात करने वाले लोग हमेशा वही होते हैं जो सामने तुम्हारी बराबरी करने का साहस नहीं रखते। वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे चरित्र पर शब्दों से प्रहार करेंगे, क्योंकि कर्मों से तुम्हें हरा पाना उनके बस में नहीं होता। याद रखो पार्थ, चुगली करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सामने किसी और का होता है और पीछे किसी और का। अतः ऐसे लोगों की बातों से विचलित मत होना, क्योंकि शेर कभी कुत्तों के भौंकने पर अपना मार्ग नहीं बदलता।
7: 16 सोमवार के व्रत में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारे जैसा पति मिल गया मुझे।
8: अरे किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें अपनी गलती तो पता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती होगी जो मेरी तुमसे शादी हुई।
7: Oh no! तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद बनाओ खाना, मैं नहीं बना रही कुछ भी।
8: हाँ, अब जब कोई बात नहीं आई तो खुद बनाओ खाना।

नमस्कार श्रोतों, एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर हो चुके जी तुम दस भी रहे रेडियो सेट में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच बिल्कुल लाइव है इस समय है रेडियो सेट में और बिल्कुल अपने फेसबुक पेज रहे माध्यम तो भी श्रोता हूँ तुसु तक रहे है अपनी लाइव गल बात किया सो आप जाने रहे यथों के माध्यम शुरू करो हा और कैसे तो है सब उम्मीद करनो आ तो है सब खरे भुणेन बढ़िया भुणेन और अपने घरे हस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त भुणेन हस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहना गया सो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है श्रोतों लाइफ में अंदर है ना। और बोलते कि जिंदगी में भी जीना की है सो आसान ना बनते जिंदगी जीना आसान की करी बन दे श्रोतों कुछ चीज़ें इग्नोर करी करी कुछ चीज़ा जो सोगे ले करी और कुछ चीज़ा जो किया सो मतलब यहाँ नज़रअंदाज इग्नोर करे करे है ना बड़ी चीज़ हर हर हर एक गल अह जानने रे अगर कोशिश कर ले श्रोता हूँ कसी भी रिश्ते में तो सो कर न कर खास वो ठेस किया सो जरूर पूछ सकती और ज़रूर पूछते भी है ना। तो हर गल जानने रे कि अस श्रोता हूँ सो कोशिश ना भी करना चाहिए कभी कभी कभी कभी जिंदगी जो कि है ना सो स्मूथली चलना देना चिंता जी करी जिंदगी चलू कर देना तीन तीन तक जिंदगी मतलब स्मूथली चलना देना चाहिए ज़्यादा ना सोचना। बहरहाल हम सचिन कपूर कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा लेकर हाजिर हुआ तुम दस भी रेडियो सेट में तो सब श्रोता जान दें कि सपने गादे कार्यक्रम मंच किया सो बहुत सारे इंदे श्रोतागण जुड़ते हैं रेडियो रे माध्यम तो इंदे फोन सो के और यह सब कह सो तेरी फरमाइशा भी पूरी कर देन और सोगी सोगी जो सो अपने क्षेत्र की कोई गलबात है सोगी साझा कर देन सो गलबात भी किया सो है मतलब शेयर कर देन रेडियो मंच और तुसु तक भी किया सो जरूर पहुँचन देन। बहरहाल नहीं बोलना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम जो कि सो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर जरूर करें जो कि बहुत सारे इंदे भुची सकते हैं बहुत सारे ऐसे श्रोता भी इन जो जुड़ रहे बंदे ना सो गए ना रेडियो रे माध्यम तो लक्ष्य होता है ऐसा जो सो गए जुड़ रहे हैं लेकिन तुझे ये ना पता कि शायद आर जे सचिन कपूर कूणा या आर जे रुचिका कूणा आर जे शशि कूणा सुमन कूणा ज्योति कूणा पिंकी कूणा और अन्य जितने भी इंदे आर जे हिंद और भी है ना तभी फेसबुक रे माध्यम तो सब की असो इंदी शक्ली भी हेरी सकते हैं ना क्या कस प्रकार होगी कि असो लाइव कर दें कि करे लाइव की असो इंदा चलता है कोशिश करी थी भी मैं कि अपना सेटअप की असो तुसु तक रहे है जरूर पहुँचान सेटअप की असो जरूर दसना ना कि अंदर रहा सेटअप की असो की करे रहा तो श्रोता तो सब जुड़ी सकते हैं 7088807 09 पर कॉल करे करे नंबर आख मौके फ्री तू सभियों के शेयर कर देने 7088807 09 पर तो है सब श्रोता कॉल कर ही सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं कार्यक्रम जो आगे बढ़ते हैं इस समय धर्मशाला का मौसम जानना ज़रूरी बंदा खासकर जो बाहर इंदे श्रोता सो कि बिखरे बंदे न जो कार्यक्रम जो होते न सो अक्सर बोलते हैं क्या है जहने भी मतलब आउट ऑफ स्टेट बंदे न तो बड़ा ज़रूरी बंदा बड़ा अहम बंदा कि यह धर्मशाला का मौसम की सो जानी लैन कि कदे आ धर्मशाला का मौसम इस समय की श्रोता सो 24 डिग्री सेल्सियस रे आसपास धर्मशाला का मौसम और कार्यक्रम मंच थोड़ा करिए और हगु आंसू ज़रूर बढ़ना है लेकिन आगाज़ भी ज़रूरी है नंबर में साझा करी था तो सो गए इस नंबर मंच तो है कॉल कर सकते हैं 5 बजे तक रहे कार्यक्रम शो तो बिल्कुल लाइव चलना तुम सब भी रहे रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच और तत्व बाद अन्य जानकारी भी हैं जो तुस हो गया सो शेयर करनी है इन शतों ता अन्य जानकारी भी के सो ज़रूर है शेयर कर ले तुस होगी। बहरहाल चल देन और कार्यक्रम रखे आसो श्रोतों आगाज करी लेन देन और आगाज तो बाद फिर जरूर तो सोगी मिल देन है ना। नंबर है शेयर करें ना 7088807 09 पर तो सब श्रोता रोजाना ही है जुड़ी सकते हैं अपने इस कार्यक्रम में रेडियो गुंजन धर्मशाला मंच गूंज अपने बन रही आइए जीता प्रवीण कपूर और प्रवीण कपूर री आवाज़ में हुंदे ने प्यार दिया आ गीत मिठड़ी आवाज़ और इस गीत जो कि श्रोतों सुकंचन मोगू जी इन द सीनियर थी कंचन

0: शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा के ना सो बिल्कुल लाइव चल रही तुम वेडियो सेट में ता आइए शो तो कार्यक्रम तो सब सचिन कपूर सो की हूँ कर देना बिल्कुल लाइव वे कार्यक्रम चल रहा है तुम सभी रे रेडियो सेट में तो सब श्रोता जरूर असोगी बने सकते हैं कॉल कर सकते हैं और अज शो तो नेत्रदान भी आ नेत्रदान महादान किया सो बल देन है ना अपने नेत्र जा अपने नेत्र दान किया सो करना महादान हाँ कजो कि तुंदी वजह थो किया सो कोई इंसान यहाँ दुनिया मंच किया सो ही रह सकता हा तुंदी वजह थो किया सो कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति किया तुंदी रिहा करी लाई करे ही रह सकता हा तुंदे ये इन दे ना रहने थो बात है ना तो ज़रूर करा शो तो और कार्यक्रम मंच हिंदी अपनी गप्पा चल रही तो इस कार्यक्रम मंच तो जुड़े सकते हैं अन्य जानकारी तुस हो गया सू जरूर शेयर करनी ना साझा करनी ना जो भी अन्य जानकारी है सू तक पूछ ली शो तो है ना खैर नूरपुर में नशा तस्कर है कि सो पुलिस पर जो नशा तस्कर हिंद तिया पर पुलिस है कि सो सिकंजा फिर का सो है शो तो और एक काफ़ी अच्छी गल है शो तो रोजाना किया सो दुई थो त्राई या त्राई थो चूर के न सो पुलिस री हिरासत में इच्छु कर दें जितने भी नशा तस्कर हैं है ना नगर परिषद कांगड़ा भी कमान के सो सुमन वर्मा वे हाथ है वे चौथी बार बनी अध्यक्ष श्रोतों इसी सो के श्रोतों इन द श्रोतगण असो के कनेक्टेड हैं कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन पूछते हैं नमस्ते जी
1: हेलो

0: मुकेश बाड़ी से बल्लू करला।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी,
0: मैं बोला सर बाड़ी से।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अशोक कुमार।
1: हाँ जी,
0: और बाड़ी ठीक ठाक?
1: बहुत बढ़िया जी। कौन देने की थोड़ना तुसू?
0: ना कर मान बन गया, इस दिन मिट्टी में ना जाना।
1: ठीक है जी, जरूर सुन ले तुसू ये गीत।
0: थैंक यू, वेलकम।
1: धन्यवाद जी। श्रोतों तो सब भी जरूर जुड़ सकते हैं, नंबर में साझा करें 7088889 पर कॉल करें। तो यह कार्यक्रम जो थोड़ा करे हगो बढ़न दे और यारी फरमाइश किया सो पूरे कर दें। बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने पन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे।

0: শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বি টিউন কর রে কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা কেন সো বিলকুল লাইভ চল রই ইনতন দে রেডিও সেট মা তা फरमाइश का दौर के अस उइए चली रहना हर शो तो फरमाइश के अस उइए पूरी बुंदे रहने हैं कुछ एक अन्य जानकारी भी तुसो गया है जरूर शेयर कर दे हिन और तू सब भी ये दसना चाहते हैं शोतों की तो सब गुंजन धर्मशाला वेड़ी गुंजन धर्मशाला रे पेज जो फॉलो भी कर सकते हैं तड़ी भी किया ये लाइव कार्यक्रम इस समय बिल्कुल चल रहा है अगर तो है गुंजन धर्मशाला लिख लेता बिल्कुल लाइव कार्यक्रम तड़ी भी किया सो है कुछ एक क्लिप्स किया सो तड़ी भी दसो कर देन बहरहाल इन अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं तीनों कनेक्ट कर देन और इसी सो की और फरमाइश भी है ना बिल्कुल इन दे आजू भाई बहुत प्यारे भाई ने डाउन टू अर्थ ने डैशिंग हिन डिसेंट हिन रुद्रा होटल यारा अपना होटल आ और तस होटल रे ओनर ने तैयारी फरमाइश आ सोगी सोगी चंद्र भारद्वाज जी भी इस कार्यक्रम जो हुनु करते हिन जो कि कसी भी पवीचे रे मोहताज ने बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है ना और सोगी सोगी इन बड़े भाई शुभम सूद भाई यारी सभी आपकी फरमाइश है क्योंकि ये अगर खा ट्रैवल करूँ कर देने शुभम सूद भाई नींद है वॉलीबॉल रहे बहुत ही अच्छे चैम्पियन रू रहन और स्मैश बड़ी अच्छी मार देती है आज भी याद है जो टाई खोली करी यारी स्मैश ऊपरारा फर्स्ट बटन की ऐसो खोली करी यारी स्मैश की ऐसो आज भी मुझो बखूबी याद है और आज भी मेरे नज़र रे सामने की ऐसो स्मैश चलें दिया शुभम सूद भाई री भी ये फरमाइश है और सोगी सोगी इंदे बड़े अच्छे भाई चिंटू भाई तैयारी भी फरमाइश जो कि उप प्रधान पद वास्ते खड़ रही थी है टीका चतैर थो लेकिन कसकी कारणवश बहुत ही अच्छी है समझदारी दसी कजो कि इतनी समझदारी बल ले सकते ग्रा अंदर और भी कंपटीशन तो और भी मनु थी है खड़ रहा ता इन्हें एट लास्ट एनालाइज करी चीज़ा और तथों बाद कि सो जहने ना वापस लें देन तहने ना कि सो अपना वापस भी ले लूँ है ना तो इतनी समझदारी भी ले सकते एनालाइज भी इन्हें करी चीज़ा और इन्हें लोगों की शायद ये सही समय नहीं आ इस वक्त नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइव ईयर बाद लेट्स सी क्या होता है ना पर यार सब मेरी फरमाइश है टूटी मेरे छिकुणों रे काची वो बैरिया भाड़े हो जो कि सुनील राणा जी इंदे बहुत ही अच्छे और बहुत ही फेमस सिंगर इंदे लोग गायक टूटी मेरे छिकुणों रे काची वो बैरिया भाड़े हो इस गीतार आनंद की इस वस्तु जरूर लेना लेकिन हवाई यात्रा करने वास्ते की सरकारी कम वास्ते हवाई यात्रा करने वास्ते की ऐसा सरकारें मंजूरी की आसो दे देती है आशो तो क्या मैं कोई भी सरकारी काम किया हिमाचल प्रदेश में जो भी सो जरूर की आशो तो सो बुझी सकता हा तो है सरकारी काम किया सो हवाई यात्रा रे माध्यम तो कर सकते हैं तो इसी सोगी श्रोता हूँ तू सब भी अन्य जानकारी भी किया सो जरूर शेयर कर ले इन दे श्रोता का ना सोगी कनेक्टेड है नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: ओ क्या चाल है
0: हाँ जी कौन बल्लून देन और कड़ी थों बल्लून देन जी
1: ए तपु बनते
0: अच्छा तपु बनते सफेद दो राम सफेद दो राम
1: हाँ जी हाँ जी सर
0: क्या बात है ना बड़ा प्यारा है तुंदा बड़ा प्यारा ना तुंदा
1: अच्छा
0: सफेद दो राम
1: हाँ जी हाँ
0: जी जी सफेद दो राम जी कौन देना गीत होना पसंद कर ले
1: ओ गीत गाना भजन सुनाई जाए करने कमाले बंदे खोटियां खानियां दो रोटियां
0: आहा क्या बात है क्या बात है खरी कमाले जा कमाले खोटियां खानियां तो बंदे सिर्फ दो ही रोटियां है ना जी
1: हाँ जी
0: क्या
1: बड़ा अच्छा लगता है
0: बहुत बहुत प्यारा गाना और सच्चाई भी इस प्यारे गाने च ना जी सच्चाई भी झलकती है हाँ जी ठीक है जी धन्यवाद शो तो ये कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ंदे हिन और तू सब भी आक और जानकारी किया सो बिल्कुल देना चाहता हा देना ना ये जो इन दे श्रोता हुनु कर देती हैं जी यार मैं ना लूँगा अजू भाई चंद्र भाई शुभम सूद भाई और चिंटू भाई ਇਹ ਹਬ ਜੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਕਰੀ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਮੁੰਡਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਇੱਛੂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਜੋ ਕਿ ਤੜੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਜੋ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਔਰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀ ਸੋ ਤੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸ਼ੋਤੋਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਤੋਂ ਇਹ ਸੋ ਕਰਵਾਈ ਕਰੀ ਕਿ ਸੋ ਵਾਪਿਸ ਇੱਛੂ ਕਰਦੇ ਕਜੋ ਕਿ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਰਹਿਣ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਸੋ ਮਾਰੇ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮੰਜ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਹ ਕਾਰਿਕਾਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸੋਗੀ ਸੋਗੀ ਸ਼ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਜੀਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਸੋ ਇਹ ਬੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਆ ਇਸ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਮਾਨੂੰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲੀਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇਣ ਨਮਸਤੇ ਜੀ
2: ਨਮਸਤੇ ਸਚਿਨ ਭਾਈ ਕੈਸੇ
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ ਤੋ ਹੈ ਬੱਲਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ
2: ਬੜੀਆ ਬੜੀਆ ਪਵਨ ਸਦੇੜ
0: ਅੱਛਾ ਚਲੀਏ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਡੀ ਗੁੰਜਨ ਮਾ ਔਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੜੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁੰਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਵਨ ਜੀ ਸੁਧੇੜ ਤੋਂ ਦੋ ਹੈ ਬੱਲੂ ਕਰਦੇ
2: ਨੇ
0: ਅੱਛਾ ਸੁਧੇੜ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਉਪਲੀ ਸੁਧੇੜ ਥਲੀ ਸੁਧੇੜ ਵਿਚਲੀ ਸੁਧੇੜ ਕਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ
2: ਰੋਡ ਪਰ
0: ਅੱਛਾ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾ
2: ਬੜੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਰੋਡ ਗੋਰਖਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧਾਰ ਰੋਡ
2: ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਰ
0: ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਕਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨੇਤਰਦਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਲੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ
2: ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਤਰਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਾ ਨੱਕ ਜਨਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲੋ ਗੁਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵਾਸਤੇ
0: ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ
2: ਜੀ ਜੀ ਆ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਨਾ
0: ਜੀ
2: ਦਾਇਤਵ
0: ਜੀ
2: ਐਸਪੀ ਮੋਰਚਾ
0: ਅੱਛਾ
2: ਤੋਂ ਇਹ ਦੇ ਬਸ 12 ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕੋਲਦਾ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰੇ
0: ਜੀ
2: ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਉਸ ਦਾ
0: ਅੱਛਾ
2: ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਫਲਕ ਮੰਜਾ ਅਗਰ ਬੁਆ ਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਜਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਉਸੇ
0: ਚਲੀਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਗੁਣਿਆਲੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਯੁਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੋ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੋਗੇ ਅਸੂ ਸਭੀ ਖਿੱਚ ਕਰੇਗੇ ਸੋ ਤੜੀ ਖਿੱਚ ਕਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਖ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੂ ਤੜੀ ਖਿੱਚ ਕਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਤੜੀ ਖਿੱਚ ਕਰੇ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਆਉਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗੇ ਸੋਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਔਰ ਲਕਸ਼ ਹੋਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੋਤਾ ਸੂ ਹੁਣ ਉਗਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੁਜਾਣੇ ਤਾਂ ਪਵਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧੇੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੂ
2: ਜੀ ਸਚਿਨ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਵੀ ਸਭੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਗੁਣਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗੇ ਆਭਾਰ ਤੜੀ ਖਿੱਚ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਪਿਸ ਲੈ
0: ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
2: ਔਰ साथ ही मेरे अगर साथी जो गाने वाले उनका नौ बजे इकत्रित होना डल लेक
0: डल लेक इकत्रित होना नौ बजे ठीक है जी
2: अगर वो नौ बजे डल लेक इकत्रित हो अपने स्टेज भी बनाई करे
0: चलिए ठीक है जी जरूर तुंदी गल की है सो हजार और लक्ष्य होता जितने भी हुनो करते तीन तक पुज गया दत्ते वे के नौ बजे तुस डल लेक में गया सो एकत्रित बुना जितने भी और भी जितने भी असू हुनो करते हेरु करते श्रद्धालु हैं जितने भी सो जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है तुसु सभी वास्ते कि दोते भी अगर नौ बजे किया सो इं युवा साथी सभी एकत्रित बुना डल लेक में तो तू है अगर चाहते हैं मोरे हाँ बिल्कुल मोरे चरना में गिच करे दर्शन भी करन और आसपास रे गंदगी साफ करन साफ सफाई अभियान तड़ी शुरू करन ता बहुत ही अच्छी गल है जी बहुत ही अच्छी गल और तुसु सभी तो गुजारिश भी कर देन की तो है जरूर गान और बड़ी चढ़ी करी किया सो इस अभियान में भाग लैन ठीक है जी पवन जी धन्यवाद गंदे गंदे अपनी कोई फरमाइश तो है जरूर दसी सकते हैं रेडी गुंजन धर्मशाला मंच पवन जी बहुत अच्छा लगो तुसो की गल करी करी सचिन कपूर धन्यवाद थैंक यू जी चलिए श्रोतों कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा चल रही और तो है सब बन रहे आर जे सचिन कपूर सो गए कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ंदे हिन और थोड़ा करे और हगो चल दे श्रोतों ता तू सब भी अक जानकारी की सो भी तुसु तक है जरूर शेयर करी दे श्रोतों कि सरकारी कार्य वास्ते कि ऐसो हवाई यात्रा करी सकते हैं अभी अफसर हिमाचल सरकार है कि ऐसो मंजूरी देते है ना कि सरकारी कार्य वास्ते जो भी ऑफिसर हैं सो मतलब बाय एयर किया सो खींचे सकते हैं कोई भी दिन सरकारी काम हाँ जो इमीजिएट हाँ बड़ी ज़्यादा जल्दी हाँ ज़रूरी हाँ सो ज़रूर हवाई यात्रा रहा आनंद किया सो ले सकते हैं और हिमाचल सरकार इति वास्ते किया सो अनुमति देती है बहरहाल कार्यक्रम जो हगो बढ़ंदे हैं नेत्रदान महादान जरूर बोलना चाहता तुसु सब भी जो कि नेत्रदान जरूर कर तुंदी हक रीथों किया सोकस की वह जीवन सफल बची सकता है तो है अगर नेत्रदान कर दें तो तुंदी हक रीथों एक और इंसान किया सो ऐसा हरी भरी दुनिया जो कि आसो हेरे सकता है ऐसा खिल खिलंदी दुनिया जो कि आसो हेरे सकता है ना इतने प्यारे प्यारे इंदे पर्वत ही नहीं हेरे सकता है ज़रूर नेत्रदान बहुत ज़रूरी है बहरहाल आऊँ सचिन कपूर लेके चल लूँ तुसु सब भी जो थोड़ी करी और हगूँ और फरमाइश के आसो ज़रूर पूरी कर लेंदन बहरहाल ये गीत वैसे खास फरमाइश शुभम सूद भाई रही थी जिन्हें टूटी मेरे चिकनोरी हालांकि एक अद्धी कॉम्युनिटी था उन्हें श्रोता हूँ तुसु दसी दिन यार पूरा परिचय आऊँ तुसु उन्हें देना चाहता और इतना भी तुसु धर्मशाला वाले दसी देना चाहता कि हर एक धर्मशाला रा शख्स की असो इं के बड़ा ही बाखूबी की असो इं जानता हा और जो ना जानता तीनों भी कदी ना कदी जानने भी जरूरत की असो पै सकते हैं तो ये ना हालांकि गद्दी ने और गद्दी कम्युनिटी थो बिलोंग ना करते हैं लेकिन इं गद्दी हर एक गाना हर एक गल समझ इंदे बल्ले भी लेंदे थोड़ी बहुत लेकिन गाना है मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज कल इनका जो यूथ आ सो इन्हें इन्हें गाने ना दसी सकता हुआ जो शुभम सूद भाई इन्दे दसी सकते हैं इतने पुराने पुराने गाने इन्दे अपने गद्दी में जिनकी एक फरमाइश टूटी मेरे छिकुण उरे काछी वो बैरिया बाड़ है वो इस तरीके रहे बहुत पुराने पुराने गीत के ना सो इन इंदे थैंक यू शुभम भाई इस कम्युनिटी जो गद्दी मनु होगी इतना प्यार करने वास्ते इनकी कम्युनिटी जो इतना प्यार दुलार देने वास्ते बहरहाल हुण दिन तुदी फरमाइश में गीत बने रहे तो है सब वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी गूंज अपने बन रहे

শত এফ এম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর ভি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হেসা বি টিউন গুরু আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা কেন সো তো সব হুন গর্দন আপনি আপনি রেডিও সেট মা ভি গুঞ্জন ধর্মশালা মঞ্জে তা সব শ্রোতা জরুর কানেক্ট হো সকদেন জনাব আস হোগে 7018119 পর নম্বর আক মোকে ফিরে আউ শেয়ার করনো 7018119 পর তো সব শ্রোতা কল করে সকদেন আর আপনা পছন্দিদা গীত কে আসো হুনি সকদে হেন बहरहाल श्रोतों लेकर चलते तू और रोहित शर्मा वनडे वास्ते किया तिन्यो हरी झंडी दसी ते फिटनेस टेस्ट किया सो तिन्या क्लियर कर लो तो जितना भी रोहित शर्मा रे फैन हैं नो डाउट आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा ह्यूज बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा ज़रूर तो ये सब भी भूणे हैं और मतलब बिग फैन थे है ना कि आ उस सामने मुड़े को तो हम पागल बुझे गए छू या फिर हाँ फोटो खिंचा लूँ ना ऐसा नहीं तैयारी जो खेलने रहा अंदाज है सिर्फ तती थे थोड़ा करे लगा हुआ ऐसा ना कि सो मतलब वो सामने चली गया तो मुँह भाई ये बुझेगा ने और आज दिन तक मैं ऐसा कभी करूँ भी नहीं इवन कि मतलब अं दसना चाहता पंजाबी स्टार कुलविंदर बिल्ला असुगी अं तो इंदे एक भाई थी इं सोगी थी है तो कुलविंदर बिल्ला बुझगो शरीमान जी बुझ गया और सब पंजाबी गायक जितने भी नहीं इं हो गया अं बिल्कुल रूब रूब छूरा हा शो तो है ना लेकिन कभी भी फोटो के सो अपलोड ना करे फेसबुक और इतिया क्योंकि ऐसा कुछ अंदरों इंटरेस्ट भी नहीं और चाह भी नहीं है तो रोहित शर्मा की बैटिंग वास्ते हूँ मतलब बड़ा क्रेजी रहा एक्साइटेड कि ऐसा रहा हाँ तो खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गए भाई साहब दुनिया अंदर खान साहब जो तो है सब बखूबी जानते भूने हैं है ना तिहारी गिरफ्तारी पर रोक लग गया तो सब जानते भूने फायरिंग मामले में खान सर की जमानत के ऐसो सुनवाई हुए थे और पटना सिविल कोर्ट में कि ऐसो खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी गया ठेरे अलावा पुलिस से कि ऐसो केस डायरी भी मंगे या श्रोतों कोर्टे अपना आदेश माँ बलो आके अगले आदेश रे अगली सुनवाई तक कि ऐसो संबंधित व्यक्ति रे खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई किया सुना अम्भुआ है ना खान सर री तरफ थो पेश भचूरे वकील अरविंद कुमार किया सो कोटा मंच बलुआ की गोली आत्मरक्षा वास्ते के सो चलाए गए थे किसी भी तरह थो भय फैलाने व मकसद की सो ना थो खान सर पर हत्यारी कोशिश और हथियार रे अवैध इस्तेमाल रे मामला किया सो दर्ज हुआ हा खान सर री कोचिंग सर है वो इन्हें बल्लू कर दे वो सो खान सर हिंता कुछ क्या है ब्रॉडकास्ट मीडिया इनता सर यह जीता है लाई ना सकते ना ना लेकिन इतिया हा कि खान सर कोचिंग पर हमला कोचिंग सेंटर पर जो हमला भी छूरत हो तेरा मामला किया सो छूरत हो फिर इतियों बाद इन्हें डिफेंस में घोड़े की सो चलो रे बोने था फिलहाल के सो गिरफ्तारी पर रोक हा और कार्यक्रम में तो ऐसा बहुत करते ना आर जे सचिन कपूर सो के हिंदी अपनी गप्पा लेके चलते श्रोत तू सभी जो इस प्यारे दे गीत तारी किनारी बनी रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे

0: नमस्कार श्रोताओं, आप मुके फिर तुम्हारा सभी का स्वागत है। हम सचिन कपूर है और चलिए कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं तो सब श्रोता जुड़ रहे हैं, हूँ कर दिन वेड़ी गुंजन धर्मशाला हूँ कर दिन ना। हाँ बिल्कुल, तो आइए बढ़ दिन थोड़ा करिए और आगो। FM बैंड 91.2 MHz पर है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर है तुसो के तुंदा अपना आरजे वीडियो जो कि कार्यक्रम है इंदी अपनी गप इस समय बिल्कुल लाइव हूँ कर दें तो ये सब अपने अपने वीडियो सेट में और बिल्कुल गुंजन धर्मशाला रे पेज में भी लाइव किया सो हूँ कर दे है ना। तो थोड़ा करिए और आगू है बढ़ दें कुछ एक जानकारी तुसो के श्रोताओं शेयर कर दें साझा कर दें और जानकारी सोगी सोगी तू सभी दसना चाहता कि तो है बिल्कुल जुड़ी सकते हैं जनाब 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर कॉल करेगा नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करें नो 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत की ऐसा होनी सकते हैं। बहरहाल इंदे अगले श्रोता सो के कनेक्टेड हैं पूछ देन कौन बलू कर देन। नमस्ते जी।
1: नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते
1: और कि नहीं मैं ठीक ठाक।
0: जी। थोड़ी करी जोरे वाली दिया कौन बल्लू कर देना और कड़ी तुम बल्लू देन।
1: आऊं अर्शिंग बल्लू कंडा जी।
0: हर सिंह जी थोड़ा करी और जोरे वाली दिया कड़ी तुम बल्लू कर देन।
1: हाँ कमरे में जाना ताल ना सुन कंदी तुम सीवा।
0: अच्छा, तो थोड़ा करी कमरे थों बाहर तक को निकलना बस थोड़ा करी और जोरे वाली दिया ताकि तुसु जो फेसबुक रे माध्यम थों इन दे श्रोता हुणु कर दिन सो भी प्रॉपरली हुणी लेन और रेडियो रे माध्यम थों ता हुणु कर दिन प्रॉपरली। तो
1: हाँ जी हाँ जी।
0: हर सिंह जी कड़ी थों बल्लू कर दिन तो है।
1: हम तो पालमपुर थों बल्लू कंदा।
0: पालमपुर थों बल्लू दिन।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और क्या हाल चाल है पालमपुर वाले रे।
1: पालनपुर रे ठीक ठाक है ना।
0: ठीक ठाक राजी
1: और
0: बाजी
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और करे लग रहे पालमपुर वाले।
1: पालनपुर रहे लग रहे अपने अपने कम में।
0: किने मौसम है पालमपुर रा धूप लग रहे।
1: बड़ी बारी धूपा।
0: अच्छा
1: ये बड़ी बड़ी हवा रहती हवा बरखा।
0: हर सिंह जी कौन दिन गीत सुनना पसंद कर ले पहले तय दस दिया।
1: गीत सुनना लगियां चढ़ाइयां शिवा जी कैलाश राजा।
0: चलिए जी लगियां चढ़ाइयां शिवा रे कैलाशा जो ईशान भारद्वाज रहे गीत।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ठीक है जी तुंदी फरमाइश की सो है पूरी जरूर कर रहे।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी। धन्यवाद बड़ी रहे तो सब रेडी गुंजन धर्मशाला सोगी।
1: हाँ जी
0: ठीक है जी। धन्यवाद मिलो बनी रहे अपने वीडियो सोगी ना जी।
1: बनी रन देर ना हाँ हाँ लाइक तेरी जिंदे फरमाइश कण की
0: अच्छा चलिए ठीक है जी। बहुत अच्छी गल है तुंदा अपना गादा कार्यक्रम है तुंदा अपना प्रोग्राम है तुंदा अपना वेड़ी गुंजन
1: मिंजे
0: था।
1: तो तुंदी गप्पा बड़ी छाड़ लगदी ने ताऊ ताऊ फोन करंदा रंदा
0: चलिए जी गप्पा इन्हें गप्पा वास्ते भी बड़ी मेहनत बछूरे ताए गप्पा आज गप्पा लगदी ना अदरवाइज ता बड़ा मुश्किल रहा पर फिर भी बहुत अपने आप जो सौभाग्यशाली मनो कि तुंदा सियाने रा आशीर्वाद इस नाचीज सचिन कपूर पर हा और हमेशा रहना भी है उम्मीद भी करनू तुसु थों जी।
1: हाँ जी
0: ठीक है जी। इजाजत दिया तुंदी फरमाइश है जरूर पूरी कर ले
1: ठीक है जी।
0: जी। श्रोताओं तो सब भी जरूर जुड़ी सकते हैं 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर इस लाइव कार्यक्रम आइंदी अपनी गप्पा मंच अपने वीडियो दोस्त अपने आरजे सचिन कपूर सोगे। तो चलिए कुछ एक और जानकारी के ना सो तुस हो गया है शेयर कर दें साझा कर दें श्रोताओं। मानसून जो लेकर ये जानकारी आ जो कि दिते हा मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत है श्रोताओं ये बल्लो है कि जो डैम बुंदे तथी थो अतिरिक्त पानी छड़ने वास्ते कि ऐसो पहले सूचना देना पैने हाँ और कजो कि कर देना पैने ये मानसून री तैयारी के अनुसार इस समय सरकार पूरी तरीके होके करू कर दे है और आपदा तो सबक लिव रहा है सरकारें भी और ऐह सभी भी कि आपदा में कि ऐसा हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान किया सो पिछले दो त्राई साल थो किया सो कंटिन्यूसली किया सो चलू करता और काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया सो बुचू करता है ना। तो मानसून जो लेकर के सो सरकार पूरी तैयारी मन छा और मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत है कि सो बल्लू अशतो शिमला में जिला प्रशासन और विभिन्न संबंधित विभाग सो क्योंकि सो मानसून सीजन री तैयारी वास्ते समीक्षा बैठक री अध्यक्षता हुई थी और मुख्य सचिव है मानसून जो लेकर के सो ये बल्लू कि भारी बरखा किया सो बूंदे है भारी बारिश किया सो बूंदे और ठेरे कारण आपदा कि आसो इंदे हा ती थो नुकसान ना भुआ कजो कि तू हेरे लिया कि कितना ही नुकसान किया सो हिमाचल प्रदेश में बुचू करता और पिछले साल जो आखिरकार कौन बोले सकता है पिछले दो त्राई साल थों कि असो हिमाचल प्रदेश है चाहे सो धर्मशाला ले लिया चाहे सो तो है मंडी ले लिया चाहे सो तो है कुल्लू ले लिया चाहे सो तो है मनाली ले लिया इडी इन क्षेत्र में कि असो काफ़ी अत्यधिक नुकसान हुआ है सो तो काफ़ी ज़्यादा किया सो आपदा थो नुकसान हुआ है। तो है सब यही चाहते हैं कि इस बार तैयारी खरी बुन सरकारी भी और इंदी भी और इन्या थों है कि इन्या आपदा थों किया सो है अच्छे भले चंगे के सो खरा मानसून सो वही है और इन्या आपदा थों है कि सो खरी गीते निपटे गान है ना। तो बहरहाल कार्यक्रम जो हागो बढ़ते हैं सो तो और फरमाइश और दौर के सो पूरा करते हैं तो सब बन रहे हैं इस समय आरजे सचिन कपूर सो की कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होने करते हैं अपने अपने वीडियो सेट में भी और फेसबुक पे माध्यम तो भी आइए था ईशान भारद्वाज रा गुरा ये गीत तुंदे सभी रे रेडियो

0: गाजर जूस,
1: पालक जूस,
2: ऐने सारे नुस्खे।
3: किन्ने भी नुस्खे ट्राई कर लो, ए बेली फैट कट नहीं हुंदा।
2: नुस्खे नहीं, लिप्टन ग्रीन टी दी साइंस ट्राई करो। इस विच हन पावरफुल कैटेकिंस जो तुहाडे मेटाबॉलिज्म नु वधाए, बेली फैट कटाए। लिप्टन ग्रीन टी, आदत पालवो।
4: With a brand new design that frees up even more pixels for personalization and an inventory of features to up your game at every level. Like GX Control to help rein in your resources with integrated limiters for RAM, CPU, and network. A sidebar for...

छोतों ता समय बुझ गो अबे तुस सभी थों इजाज़त लेने रहा समय सो के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोतों ताई समय की सो इन भी कदर करदा और सभी भी कदर करदा है ना। तो समय समय पर परिवर्तन भी ज़रूरी है, समय समय पर बदलाव भी ज़रूरी है और इजाज़त लेना भी ज़रूरी है छोतों, कजो कि आज बिछड़ लें ताई तो फिर ही मुड़ लें है ना, असू तो थोड़ी देर बाद फिर ही मिलेगा ना। और बिछड़ना भी ज़रूरी है छोतों, कजो कि फिर ही मिलने रहा कि असू मज़ा ज़रूरी इंदा। तो बहरहाल सचिन कपूर इजाज़त ले लेनु तो सुत हूँ आज नेत्रदान हाश होता हूँ ता जरूर नेत्रदान के सो जरूर करन ताकि तुंदी हक रीत हूँ कि सो कोई और शख्स ऐसा प्यारी दी दुनिया जो कि सो जरूर हेरी लिया तुंदी हक रीत हूँ किया सो कोई शख्स किया इन्या इन्या पहाड़ा जो यह प्यारी दी दुनिया जो किया सो जरूर हेरी लिया सो नेत्रदान किए सो जरूर करा महादान है भी है ना जी। और माँ बाप री सेवा हमेशा कर दे रही है सो तो हमेशा बोलो माँ बाप री सेवा करा सियाने री सेवा करा सियाने रा आशीर्वाद किया सो अपूसो के रखा और हंस दे रहा मुस्कुरा दे रहा और रेडी गुंजन जो इं ही हूं दे रहा इन शब्द था सचिन कपूर लेनू तुसु थो इजाजत नमस्ते धर्मशाला।

Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। दोस्तों, पारंपरिक रास्तों को रोकना गैर कानूनी, भूमि मालिक भी बंद नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक देश की सत्ता संभालने वाले पीएम नई दिल्ली। सरकारी कार्यों के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे अब अफसर, हिमाचल सरकार ने दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से आप सभी के अपने रेडियो सेट पर। पारंपरिक रास्तों को रोकना गैर कानूनी रहेगा, कोई भी गैरकानूनी इस तरीके को नहीं अपनाएंगे। ऐसे मामलों में एसडीएम को हस्तक्षेप एवं तत्काल कार्रवाई का आधार शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले से स्पष्ट किया है कि गांव में लंबे समय से उपयोग किए जा रहे पारंपरिक और सार्वजनिक रास्तों को कोई भी व्यक्ति जो है वो बंद नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो रास्ता उसकी निजी जमीन से होकर गुजरता हो। अदालत का कहना है कि ऐसे मामलों में एसडीएम को हस्तक्षेप और तत्काल कार्रवाई का अधिकार है। नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पहले दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सरकारी कार्यों के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे अब अफसर, हिमाचल सरकार ने दी मंजूरी। अनुमति जरूरी। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक हवाई यात्राओं को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग की ओर से संशोधित जारी किया गया है निर्देशों के तहत अब विभागों के अधिकारी राज्य के भीतर संचालित हवाई सेवाओं का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए कर सकेंगे। नॉर्वे की कंपनियों को पर्यटन हरित ऊर्जा में निवेश का न्योता। नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और नॉर्वे प्राकृतिक संरक्षण के साथ, सतत विकास के साथ, साझा दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहे हैं। दोनों के बीच सहयोग में ऐसे नवाचार पूर्ण समाधान विकसित होंगे जो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि विश्व के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भारत में नॉर्वे के राजदूत में एलिन स्टेनर के साथ इस संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए विशेष रूप से पर्यटन हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। मॉनसून की तैयारी। बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ने से पहले सूचना देना रहेगा अनिवार्य। आपदाओं से सबक लेते हुए मॉनसून को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत ने मंगलवार को शिमला में जिला प्रशासन और विभिन्न संबंधित विभागों के साथ मॉनसून सीजन की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने मॉनसून में भारी बारिश के कारण आपदाओं और उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य की तैयारियों को और मजबूत बनाने पर बल दिया। उनका कहना है कि सरकार ने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, समय रहते चेतावनी प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। हिमाचल में 5,870 करोड़ से लगेंगे 17 नए उद्योग, 25 का होगा विस्तार। हिमाचल प्रदेश में सचिवालय में हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण सिंगल विंडो की बैठक में 42 औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें 17 नए उद्योग लगाने के प्रस्ताव हैं, 25 उद्योगों को विस्तार करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 5,870 करोड़ रुपए निवेश के इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर प्रदेश के करीब 13,355 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई सिंगल विंडो की बैठक में नई औद्योगिक नीति पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने नई नीति को 2 माह के भीतर लाने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध, मूल्यांकन और उच्च अध्ययन की पूरी शैक्षणिक संरचना में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में 4 वर्षीय ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सीधे पीएचडी में प्रवेश की पात्रता मिल सकती है।
इससे स्नातक और शोध के बीच की दूरी कम होगी। नई प्रणाली में शोध को केवल विवि स्तर की गतिविधि नहीं माना गया है। पहली बार

सत्र 2026 से 27 के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 4 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दाखिला निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। भारत ने पहली बार शांतिकाल में 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशन के लिए तैनात श्रेणी में रखा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के वर्ष 2026 रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हथियार लड़ाकू विमानों, जमीन से मार करने वाली मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बी वाले परमाणु ड्रॉइड को सौंपे गए थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने इन हथियारों की तैनाती इसी साल की है। 2025 में एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया गया था। सिप्रे ने पहली बार भारत के कुछ परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल रूप से तैनात बताया है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग का अंतिम ब्रेकथ्रू सोमवार को पूरा हो गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस कामयाबी के साथ ही कश्मीर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर रास्ता बनने का सालों पुराना सपना हकीकत के बेहद करीब पहुंच गया है। प्रदेश के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के पत्रकारों को पेंशन देने की दिशा में बड़ी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में आयोजित मीडिया वेलविंग एसोसिएशन के समारोह में कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने के प्रस्ताव से सहमत हैं और इस संबंध में जल्द घोषणा की जा सकती है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापिस आ गए हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छूकर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मन पसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों गीत सुहाने नए पुराने

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

नमस्कार छोटो, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी श्रोता हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं रेडियो के माध्यम से और हमारे गुंजन धर्मशाला के पेज के माध्यम से, आप सभी का मैं नाचीज सचिन कपूर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है और मुझे पता है आप सभी अच्छे भी होंगे, और अच्छा होना भी पड़ेगा श्रोताओं, क्योंकि जब तक हम अच्छे नहीं होते तब तक हमारे कार्य जो हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो पहले हमें खुद अच्छा होना पड़ेगा, सेहतमंद होना पड़ेगा। अपनी वो कहते हैं ना, हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ का ख्याल तो जनाब रखना ही पड़ेगा। हेल्थ का ख्याल हम रखते हैं तभी हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं शतम। बहरहाल मैं सचिन कपूर हूँ, 6 से 8 बजे तक ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव चलेगा आप सभी के वीडियो सेट पर। बहुत सारी जानकारियाँ जो है हम आप तक पहुँचाएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। गीत संगीत का पिटारा जो है वो भी ज़रूर हम खोलेंगे श्रोताओं, और साथ ही साथ अन्य जानकारियां भी जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। तो कहते हैं हम धर्मशाला में रहते हैं श्रोताओं, और धर्मशाला की जो हवाएं हैं, धर्मशाला की जो फिज़ाएं हैं वो अपने आप में ही बहुत खूब हैं, बहुत प्यारी हैं, और यहाँ आने के लिए हर कोई तरसता है। आप सभी इस चीज़ से रूबरू होंगे कि धर्मशाला जो एक बार आ जाता है ना श्रोताओं, उसके बाद यहीं का रह जाता है होकर। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो धर्मशाला का मौसम जो है वो उसका हाल आप तक हम बयां करते हैं। तो इस समय धर्मशाला का मौसम श्रोताओं 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। नमी की बात करूं तो नमी इस समय जो है वो 60% के आसपास है। धूप जो है वो खिली हुई है धर्मशाला में, और एयर क्वालिटी भी जो है वो बेहतरीन है, और इसे और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमें जो है वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है हम सभी के लिए। देखिए, एनवायरनमेंट को जितना हम बेहतरीन रख सकते हैं उतना रखें, तो ये आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। वरना आने वाली जनरेशन जो है वो कुछ भी नहीं देख पाएगी, इतना अच्छा क्लाइमेट जो हमारे धर्मशाला में हमेशा से बना हुआ है वो नहीं देख पाएगी। तो चलिए जी, मैं सचिन कपूर हूँ, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का आगाज़ जो है वो हम ज़रूर करेंगे श्रोताओं एक बेहद ही बेहद प्यारे गीत के साथ। आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ। तो आइए जी, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, मिलते हैं इस अंतराल के बाद आप सभी के साथ।

शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो चौकी सचिन कपूर। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और लेके चलते हैं अब आप सभी को आज के विचार की ओर। जी बिल्कुल, आज के विचार की ओर हम सभी चलते हैं। श्रोताओं कहते हैं जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, है ना। कभी भी जीवन में किसी से भी अपनी तुलना जो है वो मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग कहानी और अपनी अलग मंजिल लेकर आया है इस दुनिया में। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए और जो पाना है उसके लिए मेहनत करते रहिए, है ना। हम अक्सर दूसरों को देखकर जो है वो अपनी लाइफ की तुलना करने लग जाते हैं कि इसके पास तो ऐसा है मेरे पास नहीं है, इसके पास तो ये सब है मेरे पास नहीं है। ये सब तुलना जब हम करने लग पड़ते हैं श्रोताओं, तो तब हमें जो है वो अपनी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल लग जाती है। लगती है कि नहीं, आप सभी बताइए। मुझे ये लगता है कि लग जाती है, है ना, और हो भी जाती है। जब भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं लाइफ में तो लाइफ जो है वो मुश्किल हो भी जाती है श्रोताओं। तो बहरहाल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम में अब आप सभी को हम लेके जाएंगे श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर के साथ। गूंज अपने बन के और गूंज हमारे जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता हैं उन सब की। तो आज नेत्रदान भी है श्रोताओं, इस बारे में भी हम आपसे ज़रूर डिस्कशन करेंगे, ज़रूर आप तक

ये जानकारी जो है वो ज़रूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम सभी जानते हैं बखूबी कि नेत्रदान जो है वो महादान है, तो हमें नेत्रदान जो है वो ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारी आंखों से जो है वो कोई और व्यक्ति इस रंगीन दुनिया को जो है वो देख ले, कोई और व्यक्ति जो है इस बेहतरीन प्यारी सी दुनिया को जो है वो देख ले। इसलिए श्रोताओं, नेत्रदान करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए नेत्रदान और महान बनिए श्रोताओं, और अपने कर्मों को भी जो है वो अच्छा कीजिए। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के इस गीत की ओर।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला बिल्कुल लाइव अपने अपने वेडियो उस सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। आइए श्रोता उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे से गीत जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाने का प्यारे प्यारे गीतों को पहुंचाने का जो है वो प्रयास नियंत्रण जारी रहेगा। तो आइए कुछ कार्यक्रम में जो है श्रोतों आपको पता है कि कार्यक्रम में कुछ एक सुर्खियों पर हम नज़र भी डालते हैं। तो हिमाचल की सुक्खू सरकार ने राज्य के दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी मजदूरी दरों में जो है वो वृद्धि कर दी है। वित्त विभाग की ओर से जो है वो जारी किए गए आदेशों के अनुसार संशोधित मंजूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस फैसले से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार ने न केवल दिहाड़ी कर्मचारियों की मजदूरी ही नहीं बढ़ाई है बल्कि पार्ट टाइम आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी जो है वो नई दरें निर्धारित की हैं। अब पार्ट टाइम कर्मचारी को छप्पन रुपये प्रति घंटे की दर से जो है वो भुगतान किया जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, अब पार्ट टाइम कर्मचारियों को ₹56 प्रति घंटे की दर से जो है वो भुगतान किया जाएगा। तो कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं इस प्यारे से गीत की ओर। हमारे साथ यूँ ही बने रहिए और जुड़े रहिए।

श्रोतो, अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, है ना जी। हाँ, तो वो चांद से पर्दा जो है वो ज़रूर करना चाहिए श्रोतों की, कहीं चेहरे का नूर जो है वो तो नहीं चुरा ले। बहरहाल जिनके चेहरे चमकते हैं उन्हें पर्दा भी करना चाहिए, है ना जी। और मुझे लगता है चेहरे से तो कुछ नहीं होता, आपका किरदार जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, आपकी सोच जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और किरदार अगर आपका बेहतरीन है तो आप खुद ब खुद जो है वो चमक जाएंगे, चमक उठेंगे इवन की। तो आइए, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, गुड इवनिंग धर्मशाला, और मैं नाची सचिन कपूर इस कार्यक्रम को इस वक्त होस्ट कर रहा हूँ आप सभी के रेडियो सेट पर। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोतो, और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। क्या श्रोतो, आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 18 दिनों में ही 271 जंगल जो हैं वो जल चुके हैं। जी बिल्कुल, ये जानकारी जो आप सुन के थोड़े से शॉक्ड ज़रूर हुए होंगे, जितने भी हमारे रेडियो के माध्यम से श्रोता हमें सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देखेंगे या देख रहे हैं। वाकई में ये हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में 18 दिन में जो है वो 271 जंगल जल चुके हैं। वाकई में ही पारा चढ़ने के साथ ही प्रदेश के जंगलों में भी जो है वो आग की घटनाएं बढ़ गई हैं श्रोतों, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 271 जंगल जो हैं वो जले हैं, वो भी पिछले 18 दिन में। जी बिल्कुल श्रोतों, फायर सीज़न अब तक कुल 404 आग की घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। हालांकि प्रदेश में फायर सीज़न आरम्भ होने के बाद 22 मई तक जो है वो कुल 133 घटनाएँ ही रिकॉर्ड जो हैं वो हुई थी श्रोतों। वन विभाग के आंकड़े के अनुसार अगर मैं बात करूं श्रोता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो दर्शा रहा है ये बता रहा है कि फायर सीज़न के दौरान 120 जंगलों में जो है वो आग की घटनाएं जो है वो दर्ज हुई हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ धर्मशाला की अगर मैं बात करूं, अपने धर्मशाला की अगर मैं श्रोताओं बात करता हूँ, तो धर्मशाला सर्कल में जो है वो 104 घटनाएँ सामने आई हैं। ओ, ये काफ़ी 104 घटनाएं हमारे अपने धर्मशाला में सामने आई हैं। तो सोचिए पिछले 18 दिन में जो है वो 271 जंगल जले हैं, जिसमें से 104 जो हैं वो हमारी खुद की धर्मशाला के जंगलों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरी गुजारिश भी रहेगी जितने भी इस समय हमें श्रोता सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और उनसे गुजारिश रहेगी कि वनों में आग लगाने से जो है वो बारिश नहीं होती। ये मानसिकता हमने कहीं ना कहीं बना रखी हुई है कि अगर हम वन में आग लगा देंगे तो बारिश होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि जो जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं, जो जितने भी जीव जंतु हैं हमारे वो वहाँ पर रहते हैं, वो जल कर तड़प कर आग की लपेट में आके जल कर जो है वो राख हो जाते हैं। और उन्हें काफ़ी, आप खुद सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस चीज़ को कि अगर आपको कोई गरम चाकू आपके यहाँ हाथ में रख देता है, या आपका हाथ जो है वो गैस से जल जाता है, या गरम किसी कुकर से जल जाता है, तो आपको कितनी पेन होती है। वो तो जीव है, वो जीव अगर इस तरह से हम इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देंगे श्रोताओं, तो वो हमारे लिए, मुझे लगता है, मानव जीवन ही नहीं है फिर। अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो वो मानव जीवन में थोड़ी ना गिनती होती है हमारी फिर, है ना। तो कोशिश करते हैं और कामयाब भी होंगे कि अगर कोई आपको लगता है वन में आग लगा रहा है, या कोई शरारती तत्व इस प्रकार का काम जो है वो कर रहे हैं, जो वन में आग लगा रहे हैं,

मस्ती में कुछ भी कर रहे हैं जिससे हमारे वनों को नुकसान हो रहा है, तो उस पर शीघ्र से शीघ्र जो है वो कार्रवाई करनी होगी। और ये आम जनता का जो है वो फैसला है। ज़रूरी नहीं कि हम फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इंतज़ार करें कि वो आएंगे। आप भी उन्हें जो है वो रोक सकते हैं, तत्काल उन्हें रोक सकते हैं और गुजारिश भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आंकड़े जो इस समय दर्शा रहे हैं ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये डराने वाले आंकड़े हैं। श्रोताओं, दर्शकों, ये वाकई में ही डराने वाले जो है वो आंकड़े हैं। 18 दिन में 271 जंगल जलना काफ़ी काफ़ी परेशानी वाली बात है हम सभी के लिए। चलिए, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, और कार्यक्रम का नाम है गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए जी, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी को। और भी अन्य जानकारियाँ हैं वो भी आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे रेडियो के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से। बहरहाल, लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने नाची सचिन कपूर के साथ। देखिए, ये गीत जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, कि हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल ही जाता है, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आता है। याद कीजिए ना वो कॉलेज वाले दिन, याद कीजिए ना वो पुरानी यादें, याद कीजिए ना वो छुप छुप के जवाब सभी भी मिलते थे।

इस गीत का आनंद हम सभी जरूर लेंगे वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। याद आया आप सभी को कि आप भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं छुप छुप के तो ज़रूर मिले होंगे। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, ये इश्क चीज़ ही ऐसा है श्रोताओं कि छुप छुप कर मिलने पर मजबूर ज़रूर करता है। प्यार अगर सच्चा हो तो ज़रूर निभाना चाहिए, और उस प्यार पे जो है श्रोताओं वो चाहत दिखती है, वो निभाने का जुनून दिखता है। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपका अपना धर्मशाला।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय चला हुआ है आपके अपने वेडियो सेट पर वेडी गुंजन धर्मशाला के सेट पर। गुड इवनिंग धर्मशाला, आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब वक्त हुआ है वेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का, वापस मिलते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: शोध FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है और मैं हूँ सचिन कपूर, आपका अपना नाची सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है एक बार पुनः रेडियो गुंजन के इस प्लेटफॉर्म पर, रेडियो गुंजन के गूंज भरी दुनिया पर। आप सभी घर बैठे और कुछ लोग जो है वो ट्रैवल करते भी जो है वो सुन रहे होंगे इस वक्त रेडियो गुंजन धर्मशाला को। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब लेके चलते हैं श्रोताओं आप सभी को इस जानकारी की ओर। CM का संदेश है, कांगड़ा के विकास में नहीं आने देंगे कोई कमी। जी बिल्कुल, नगर परिषद कांगड़ा में जो है वो श्रोताओं अध्यक्ष एवं उप अध्यक्ष पद पर जो है वो चुनाव होने के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम के उप अध्यक्ष अजय वर्मा के माध्यम से जो है नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमन वर्मा, उप अध्यक्ष राजकुमारी तथा सभी पार्षदों की मुख्यमंत्री से वीडियो कॉल पर बातचीत करवाई गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि ये जीत झूठ पर सत्य की जीत है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने 3 नगर निकायों में मिली जीत को इस तरह प्रस्तुत किया जैसे कांग्रेस पूरे प्रदेश में चुनाव हार गई हो, जबकि वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूरे प्रदेश के नगर निकाय चुनाव परिणामों को देखे जाएं तो 29 से अधिक निकायों में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं उनके पल्ले में जो है वो जीत दर्ज हुई है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता ने विकास और सच्चाई के पक्ष में अपना मत दिया है। जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर उन्हें हार का सामना जो है वो करना पड़ा है। कांगड़ा जिला में भी पंचायती राज संस्थाओं में कांग्रेस का जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, जो कांग्रेस की नीतियों और सरकारों के कार्यों पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नगर परिषद कांगड़ा के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमन वर्मा, उपाध्यक्ष राजकुमारी, सभी पार्षदों तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। तो आइए, कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला आपके अपने वीडियो सेट पर आपके अपने वीडियो इंजन पर। तो आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब आपको लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। धर्मशाला में फिर बीच रास्ते में हाफी एचआरटीसी की वोल्वो बस। जी बिल्कुल श्रोताओं, धर्मशाला में एचआरटीसी बसों के बार बार बीच रास्ते में ख़राब होने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। श्रोताओं एक बार फिर से एचआरटीसी की वोल्वो बस तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर खड़ी हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और निगम के रखरखाव तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले दो सप्ताह में धर्मशाला में एचआरटीसी की ये तीसरी बस है जो बीच सड़क पर खराब हुई है। ताज़ा घटना में हम बताना चाहते हैं आपको, एचआरटीसी की ऊना डिपो की एक वोल्वो बस सिविल लाइन धर्मशाला में विवेकानंद पार्क के समीप खराब हो गई। वर्ष 2016 में पंजीकृत ये बस पहले कचहरी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर खड़ी रही, जिसके कारण यातायात प्रभावित हुआ। बाद में कर्मचारियों ने जैसे जैसे बस को मुख्य सड़क से हटाकर बाईपास मार्ग पर खड़ा किया, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सके। हालांकि इस दौरान यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना जो है श्रोताओं वो करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले एचआरटीसी प्लेऑफ मुकाबले के दिन पठानकोट डिपो की एक एचआरटीसी बस सिविल लाइन क्षेत्र के विवेकानंद पार्क के समीप ही खराब हो गई थी। उस बस में बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए जो पर्यटक आए थे वो बैठे हुए थे, वो सवार थे। इसके तीन दिन बाद शुक्रवार को जोनल अस्पताल धर्मशाला के समीप भी एक एचआरटीसी बस टायर फटने के कारण सड़क पर खड़ी हो गई थी श्रोताओं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई थी। लगातार कुछ दिनों के भीतर तीन बसों के खराब होने की घटनाओं ने एचआरटीसी के वाहन रखरखाव और फिटनेस जांच व्यवस्था को लेकर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। धर्मशाला इन दिनों पर्यटन गतिविधियों और बड़े खेल आयोजनों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ऐसे में व्यस्त मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन की बसों का बार बार खराब होना न केवल यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बना हुआ है, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था पर भी अतिरिक्त दबाव जो है वो डाल रहा है। लोगों का कहना है कि निगम की बसों की नियमित तकनीक जांच और रखरखाव पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो रोकी जा सके और इस प्रकार की घटना जो है वो बार बार सामने ना आए। श्रोताओं आप सभी बने हुए इस समय वेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: शोध एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे वीडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक माफ करें समाचार। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे अपने वीडियो गुंजन के साथ।
1: राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इसी बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक गलियारे शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग 1 हफ्ते से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक के 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के 3रे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। ICC ने डॉक्टर सिंह को बताया कि वह अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को सुगम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आशावाद और सकारात्मक ऊर्जा का नया दौर चल रहा है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं APEX+ POINT ऑथोराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।

क्या है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आप सभी को रूबरू करवाते हैं प्रदेश के प्रदेश के मौसम के साथ। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं प्रदेश का मौसम श्रोताओं। तो प्रदेश में जून की गर्मी से अब मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी क्षेत्र भी जो है वो तपने लगे हैं श्रोताओं। और मौसम विभाग के अनुसार अगर मैं बात करूं श्रोताओं, तो कुछ हिस्सों में जो है वो लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 11 जून से मौसम का ताज़ा अगर मैं ताज़े 11 जून से बात करूं श्रोताओं, तो कुछ ज़िलों में जो है वो बारिश आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 11 जून को कुल्लू मंडी शिमला और सिरमौर ज़िले में आंधी ओलावृष्टि बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है श्रोताओं। 12 जून को कुल्लू मंडी और शिमला ज़िला के लिए फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है श्रोताओं। इन क्षेत्रों में ताज़ा आंधी इन क्षेत्रों में श्रोताओं कहना चाहता हूँ मैं आप सभी तक बात बता पहुँचाना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रों में तेज आंधी ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई गई है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन ज़िलों में जो है वो येलो अलर्ट रहेगा। 13 जून की अगर मैं बात करूं तो 13 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर ज़िला में आंधी बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। 14 जून को भी जो है वो प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस तरह का येलो अलर्ट जो है वो जारी रहेगा। आप सभी बने हुए समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका अपना कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और लेके चलते हैं आप सभी को कुछ और प्यारे प्यारे से गीतों की ओर। बने रहिए हमारे साथियों ही।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला में। आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं। चंडीगढ़ मनाली फोर लाइन पर श्रोताओं कहीं ना कहीं ये दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है। तेज़ रफ्तार बाइक आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी श्रोताओं। इस भीषण टक्कर में बाइक पर सवार तीनों दोस्तों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई श्रोताओं, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका नेरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है वो इलाज चल रहा है श्रोताओं। दोनों मृतक मंडी सदर के मराथू क्षेत्र के रहने वाले थे श्रोताओं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो हमारे तक पहुंची है आप तक पहुंचाते हैं कि दुर्घटना तकरीबन सुबह 11:15 की थी श्रोताओं। बाइक पर सवार तीनों युवक मंडी से सुंदरनगर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान जो है वो उन्होंने बाइक जो है वो अनियंत्रित कर दी है ना, और बाइक अनियंत्रित होकर जो है वो आगे चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी श्रोताओं। टक्कर लगी और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक सवार 21 वर्षीय प्रदीप कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई श्रोताओं। हादसे की सूचना मिलते ही जो है स्थानीय लोगों और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अन्य दो घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उपचार के दौरान दूसरे युवक राजीव कुमार की भी मौत हो गई और राजीव कुमार ने भी जो है वो दम तोड़ दिया। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि नागचला के पास हुए इस हादसे को लेकर मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मामला तो चलिए दर्ज हो ही गया है श्रोताओं, लेकिन उससे पहले हम आप तक ये जानकारी बार बार पहुंचाते हैं, हर बार पहुंचाते हैं और इस जानकारी को आप जितना शेयर कर सको उतना कम है कि तेज़ रफ्तार में कुछ नहीं रखा है और ख़ासकर बाइक की तेज़ रफ्तार में तो कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार पकड़नी है तो वो ज़रूर पकड़ लीजिए, बुलंदियों की तेज़ रफ्तार पकड़नी है तो वो पकड़ लीजिए, लेकिन इस तरह की तेज़ रफ्तार जो है वो घातक है श्रोताओं हर किसी के लिए। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम के इस गीत की ओर। बने रहिएगा वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: click on the
1: श्रोतों एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम इस वक्त चला हुआ है रेडियो गुंजन धर्मशाला में। गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी रेडियो गुंजन के जितने भी श्रोता हैं उन सभी का मैं सचिन कपूर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी करता हूं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि खुश रहना, तंदुरुस्त रहना जो है वो आपके अपने हाथ में है। आप किस तरह से जो है वो खुश रह सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप बढ़िया रह सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतों धर्मशाला में टीम इंडिया ने अब तक 3 मुकाबले जीते हैं। अब 13 जून को अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद खेला जाएगा ये पहला मुकाबला। श्रोतों HPCA के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में टीम इंडिया का अब तक वर्ल्ड कप 2023 के अपने शानदार प्रदर्शन के दौरान न्यूजीलैंड को हराने के साथ ही जो है वो 3 मुकाबले जीते हैं। श्रोतों हालांकि 2 वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को हार भी मिली है। अब 13 जून शनिवार को भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद भारतीय टीम 3 वर्ष बाद धर्मशाला स्टेडियम में मैच खेलेगी। इससे पहले अब तक इंडिया क्रिकेट टीम के धर्मशाला में खेल 5 वनडे मैचों में 3 क्रिकेट टीम के धर्मशाला में खेल मैच माफ़ करें धर्मशाला स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। श्रोताओं जी बिल्कुल, इससे पहले अब तक इंडिया क्रिकेट टीम के धर्मशाला में खेले 5 वनडे मैचों में 3 में भारतीय टीम की जीत मिली है। भारतीय टीम की जीत हुई है 3 मैचों में, जबकि 2 में हार झेलनी पड़ी है। श्रोताओं भारत ने 27 जनवरी 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें 7 विकेटों से हार हुई थी। वहीं दूसरा मैच 17 अक्टूबर 2014 को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ हुआ, जिसमें 60 रनों से जीत प्राप्त की। तीसरा मैच 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें 6 विकेटों से जीत हासिल की थी। श्रोतों 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ चौथा वनडे खेला था, जो कि 7 विकेटों से हारा था भारत ने। इसके अलावा 5वां वनडे की अगर मैं बात करूं श्रोतों, तो वर्ल्ड कप के 2023 के अभियान के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 अक्टूबर 2023 को खेला था श्रोतों, जिसमें 4 विकेटों से जीत दर्ज की थी। उधर HPCA के महासचिव मनोज शर्मा ने बताया कि भारत अफगानिस्तान मैच की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि दोनों ही टीमें 11 जून को जो है वो धर्मशाला में पहुँचेंगी, यानी कि कल जो है वो दोनों टीमें पहुंच जाएंगी धर्मशाला में। आप सभी सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर के साथ ये लाइव कार्यक्रम इस समय चला हुआ है श्रोतों। और अब वक्त हुआ है गुड इवनिंग धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का श्रोतों, और अंतराल के बाद आप सभी को हम लेके जाएंगे कुछ एक और जानकारियों की और कुछ एक और गीत संगीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72 लाख पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और लिंक्डइन लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं तो आज ही जाएं APEX+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिन्हें अपना समझकर हर कठिन समय में उनके साथ खड़े रहे। कई बार वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई करते हैं, और यही संसार का स्वभाव है पार्थ। जिसे तुम अपना मानते हो वो सदा तुम्हारा हित नहीं चाहता। पर स्मरण रखो, उपकार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला तुम्हारी भावना समझे। कुछ लोग प्रेम को अधिकार समझ लेते हैं और तुम्हारे मौन को कमजोरी। इसलिए अच्छा बनो, पर अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और जब अपने ही तुम्हारी बुराई करें तो स्वयं को बदलना मत। अपनी अपेक्षाएं सीमित रखो, क्योंकि सभी अपने दिखने वाले वास्तव में अपने नहीं होते।
1: हेलो
2: हेलो सर, shopping.com से आपने जो जूते ऑर्डर किए थे फिलहाल वो स्टॉक में नहीं है।
1: पेमेंट तो कट हो गया।
3: Zoom in.
2: Don't worry, sir. रिफंड के लिए QR कोड भेज रही हूँ, आपको सिर्फ स्कैन करना है।
1: QR कोड से रिफंड?
2: Yes, sir.
3: Got it.
2: यही है सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस रिफंड के लिए। प्लीज जल्दी कीजिए, आपका पैसा लौटाना हमारा फर्ज है।
3: क्यों मैडम फर्जी, बहुत जल्दी है आपको?
2: नहीं तो
3: चलो सबको खड़ा करो। तो आप क्या समझे, QR कोड सिर्फ पेमेंट करने के लिए स्कैन किया जाता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ अभी।
7: अच्छा सुनो, आते हो मेरे लिए थोड़े से पनीर के पकोड़े ले आना।
1: तुम पागल वागल होगी हो क्या?
8: Oh, no.
1: पता भी है पनीर के पकोड़े कितने अनहेल्दी होते हैं, कैसे कैसे तेल में तलते हैं वो लोग। कुछ हेल्दी खाओ यार।
7: अच्छा अच्छा सुनो, 1 किलो काजू बादाम ले आना फिर।
1: तुम बुरा मानगी ना?
7: नहीं तो
1: तुम बुरा मानगी, तुम्हें नहीं पता। ठीक है यार, मैं ले आऊंगा पकोड़े, कभी कभी तो खाती हूँ, इसमें क्या हो गया, कभी कभी एनएलडी भी खाना चाहिए।

शोधो अंतराल के बाद आप सभी का मैं सचिन कपूर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए जी, लेके चलते हैं अब आप सभी को अंतराल के बाद इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला है और आप सभी बने हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। जानकारियों का पिटारा भी चला हुआ है श्रोताओं और गीत संगीत का पिटारा भी आपने खुलता हुआ सुना। तो अब आपको लेके चलेंगे हम जानकारी की ओर। जी बिल्कुल, 7:45 हो चुके हैं श्रोताओं और अब वक्त हो चुका है रेडियो गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में भाजपा ने हवन यज्ञ कर मांगी लंबी उम्र की दुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से किया जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को डेफर करने की अधिसूचना ली वापस। जुलाई में बकाया राशि सहित मिलेगा पूरा वेतन। और नाहन में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। भाजपा ने दूसरी बार जमाया कब्जा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस बीच नरेंद्र मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का कीर्तिमान स्थापित करने की खुशी और उनकी दीर्घायु की कामना में आज प्रदेश भर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। सोलन में भाजपा शहरी मंडल द्वारा इस मौके पर आयोजित हवन यज्ञ के बाद भारत सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कई विकराल समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक देश को इन समस्याओं से उबारा।
1: आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री का रुतबा उन्होंने हासिल किया है और इन 12 सालों में आदरणीय मोदी जी ने देश को जो आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, देश के सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अतुलनीय। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए आज पूरे देश मंदिरों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
0: शिमला में भी इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ का आयोजन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक विनोद कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में नई पहचान स्थापित की है।
2: आज शिमला के राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए, वो स्वस्थ रहे, देश के करोड़ों लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे, उस संदर्भ में आज राम मंदिर में हवन और पूजा का आयोजन यहाँ पे किया गया।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। राज्यपाल आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर व निशुल्क दंत स्वास्थ्य जांच शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने रेड क्रॉस द्वारा समाज के प्रति किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने बाद में अखिल भारतीय कलाकार संघ के वार्षिक समारोह और अखिल भारतीय नाट्य व नृत्य प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का प्रभावशाली माध्यम भी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिमला में श्रम व रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को प्रमाण पत्र और लाइसेंस सेवाओं जैसी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और डिजिटाइज करने के निर्देश भी दिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है और यहाँ विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त 7 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के पास सरकारी भूमि पर बसे दुकानदारों और अन्य काम करने वाले 113 परिवारों को 16 करोड़ 76 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा मामला है जहां सरकारी भूमि पर कारोबार करने वालों को सरकार भूमि अधिग्रहण करने के लिए सहायता राशि प्रदान कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्सटेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित करने के आदेश वापस ले लिए हैं। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार स्थगित की गई वेतन की रकम अब इन्हें जुलाई महीने में जून महीने के वेतन के साथ मिल जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री के वेतन का 50% हिस्सा आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा। प्रदेश सरकार ने 18 अप्रैल को जारी अधिसूचना में उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को कुछ हिस्सा डेफर कर दिया था। पंचायत समिति नाहन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने फिर से कब्जा जमा लिया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज हुए चुनाव में भाजपा समर्थित रमेश चौधरी को अध्यक्ष और माया देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। नाहन के SDM राजीव सांख्यान ने बताया कि चुनाव में 15 में से 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और चुनाव सर्वसम्मति से हुआ।
3: पंचायत समिति नाहन के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री रमेश कुमार

0: रामपालियों को निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष किया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए माया देवी पत्नी अशोक कुमार ग्राम बलसाद ग्राम पंचायत कौलामाला भुगतो पंचायत समिति नाहन का निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया और उसके बाद विधि के अनुसार दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संविधान और सत्यम की शपथ दिलाई।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास और इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों की कल्याण की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। आयोग के अध्यक्ष अत्र सिंह आर्य ने शिमला में उच्च अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल जनजातीय विकास की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने आज युवा संसद कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के साथ बातचीत भी की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति की है और करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। बिंदल ने आज नाहन में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों तक पहुंची है और आतंकवाद उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई कर देश को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 12 और 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मंडी जिला के स्कूलों में किए गए सोशल ऑडिट में आपदा प्रबंधन आधारभूत ढांचे की सुरक्षा और समावेशी शिक्षा से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आई हैं। सर्वेक्षण में एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्रियान्वयन और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भी कमियां पाई गई हैं। सर्वेक्षण से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि इन निष्कर्षों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है ताकि जिला के सभी स्कूल विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हो सकें। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 43 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी शिमला में भी आज तापमान 28.3 डिग्री तक पहुंच गया जिसके चलते लोगों को जोरदार तपिश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने और 4 जिलों कुल्लू मंडी शिमला और सिरमौर में कुछ स्थानों पर अंधड़ ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव में आज से मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप आरंभ हुई। चैंपियनशिप का शुभारंभ उपायुक्त अनुपम कश्यप ने किया। ये चैंपियनशिप अंडर 11, 13 और 15 आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के लिए आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में शिमला जिला से लगभग 180 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रतियोगिता का आयोजन शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित मामलों को आपसी सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रदेश भर में भाजपा ने हवन यज्ञ कर मांगी लंबी उम्र की दुआ। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से किया जन कल्याणकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश सरकार व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश सरकार ने उप मुख्यमंत्री मंत्रियों विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन को डेफर करने की अधिसूचना ली वापस। जुलाई में बकाया राशि सहित मिलेगा पूरा वेतन और नाहन में सर्वसम्मति से चुने गए पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भाजपा ने दूसरी बार जमाया कब्जा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: तो आरजे सचिन कपूर के साथ आप सभी कार्यक्रम में सुन रहे थे गुड इवनिंग धर्मशाला। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है और श्रोतों वक्त भी हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो जाते जाते आप सभी को बस यही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए और अपनों का प्यार यूँ ही अपने साथ रखिए। श्रोतों अपनों का प्यार ही हमारी ताकत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं